जाओ दिल इसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किस

कोई तो बताओ, कोई समझाओ, दिल इसको दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किस

0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
4: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
5: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: कुछ सुबह ऐसी होती है जो बस अपनी होती है, ना कोई जल्दी ना कोई शोर, बस चाय की भाप, पुराना सा गाना और हल्की सी मुस्कान। आज है फ्राइडे की सुबह, 5:09 हो चुके हैं। कुछ ऐसा चलाना चाहिए जो कि आपके मूड को अच्छा कर दे, जो आपके दिल को कहते हैं ना बहुत ही प्यारा सा कर दे। तो चलिए जीते हैं इस मॉर्निंग मॉर्निंग को। आप सबका स्वागत है RM2 रेडियो मस्ती पर, राइज एंड शाइन में मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय करते हैं इन गानों को सुबह सुबह, बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:19 हो चुके हैं दोस्तों. पुराने गाने चाहे बुजुर्ग हो या नई जनरेशन, सभी के फेवरेट होते हैं, क्योंकि जब ये गाने बजते हैं ना तो आंखों में एक अलग

0: सी मस्ती छा जाती है क्योंकि याद ताज़ा हो जाती है और ये मुस्कान आ जाती है। तो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, इसे ही कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ये जो नेक्स्ट गाना बजने वाला ना, ये सभी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आएगा और आपको उन सभी की याद दिलाएगा जिसको भी आप प्यार करते हैं। और आज जो एक साथ में कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिस गाने फिट होता हो, ज़रूर उसके लिए गाइएगा। हम तो यही कहते हैं, यही इंजॉय करने का टाइम है, आपका टाइम है, तो इसको सबसे ज़्यादा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, डांस करते हुए अगर कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये गाना आप सबके लिए।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:29 हो चुके हैं दोस्तों. सुबह उठते ही अगर आपने फ़ोन उठा लिया है, RM2 रेडियो मस्ती चलाया है तो कोई बात नहीं, पर फ़ोन उठा लिया आपने, अपने इमरजेंसी कोई अर्जेंट मैसेज

0: चेक कर लिए, उसके बाद फोन को साइड में रख दो, चाय पीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ टाइम आपका है, जहाँ पे गहरी सांस ली जाती है, जहाँ पे खिड़की खोल के सिर्फ थोड़ी सी हवा को महसूस किया जाता है, जहाँ पर एहसास किया जाता है अपने सारे आसपास जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनका एक बार चेहरा देखना, और उनसे कभी कुछ कोई जो उठ गया उनसे बात करना, जो जाने वाले हैं काम पर जाने वाले हैं उनके लिए कुछ प्रिपेयर करना, और सबसे पहले खुद को उठाना। ये टाइम आपका है, इसको बिल्कुल भी फ़ोन स्क्रीन के लिए मत यूज़ कीजिए, ये सबसे कहते हैं अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, आंखों को थोड़ा सा रोल कीजिए, थोड़ी सी अपनी कहते हैं ना ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए 1 मिनट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने इतना सा भी कर लिया तो आपके पास एक बहुत ही फ्रेश एयर इनसाइड जाने वाली है, और जो आपके लंग्स के अंदर कहते हैं ना कि जो खराब एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो मैं यही कहूँगी आपको, ये मॉर्निंग अपने चेहरे को एक रौनक देने के लिए अपने लिए 2-3-4-5 मिनट अपने लिए खुद के लिए निकालिए, फ़ोन के लिए बिल्कुल नहीं। इंजॉय कीजिए गानों को।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: ना।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: 5:38 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, और अभी जिन्होंने अभी सिर्फ ज्वाइन किया है उन सभी का वेलकम है आप ही के प्रोग्राम में, जहां पे हम लोग मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वो जो टाइम जिसका सभी को इंतज़ार होता है आपके मैसेजेस का। तो थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं इस समय। जयशन हरदयाल जी साथ दे रहे हैं और अपने सारे स्टाफ के साथ, या अपने घर में जहाँ भी होंगे, मैं तो बस यही कहूँगी आप आराम से काम कीजिए। आपका मैसेज अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला आता है, तो हम भी सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं। सुया बिहारी जी साथ जुड़ी हुई है और अपने पति लाल देव जी को

0: बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। साथ में बेटा विकी, कीर्ति, श्वेता, रोशन, रिद्धि, सोनाक्षी, अवनी एंड क्यूट वन, सभी का दिन अच्छा होए। और ये कह रही हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेरी ज़िंदगी में, उनका चेहरा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग क्या है, क्योंकि सभी की फीलिंग ऐसे ही होती है, अपने परिवार का सुख और प्यार देखना। रेशमा भुगुन जी साथ दे रही हैं और अपने हस्बैंड शैलेश के लिए एक बात इतना ही कहना चाहती है कि मैं तुम्हें जान देती हूँ, क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। क्या बात है, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस भेजने के लिए। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सरोज राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वश, विशाल कथ्रबोन से साथ दे रहे हैं और राइज एंड शाइन को बस कह रहे हैं थैंक यू। और राइज एंड शाइन भी आपको साथ में ही कह रहा है वेलकम, क्योंकि आप सब होते हैं तभी तो ये प्रोग्राम अच्छा चल पाता है। साधना मुकेश लालमारी से साथ दे रहे हैं और वो भी इतना ही कहना चाहती है सभी को गणपति बप्पा मोरिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी। बामू से धनवेश्वर जी साथ दे रहे हैं अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ में। रेखा, निशा, देवदोस फैमिली, सभी के लिए बस बेस्ट विशेज मांग रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अब्दुल एन सायरा बानो साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। सुरेश शर्मा साजदा जी बहुत ही प्यार से सभी के लिए गुड मॉर्निंग लेकर आए हैं और हम भी आपको कहेंगे मैसेजेस भेजते रहिए, तब हम जब हॉरोस्कोप कर लेंगे उसके बाद फिर से जुड़ेंगे आपके साथ में। तब तक इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musty.
1: Your daily horoscope.
0: RM2 Radio Musty.
2: 5:46 हो चुके हैं दोस्तों, तो काम हो या पढ़ाई हो, रिश्ते हो या अपनी सेहत, हर चीज़ को थोड़ा समय और अच्छी एनर्जी दीजिए। चलिए देखते हैं आज आपका राशि फल आपके लिए क्या लेकर आया। सबसे पहले
3: एरीज मेष राशि,
2: आज सुबह से काम में अच्छी रफ्तार रहेगी। कोई जिम्मेदारी आपके हुनर को सामने ला सकती है। जल्दी में निकले तो नाश्ता छोड़कर मत जाइएगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5।
3: टॉरस वृषभ राशि,
2: आज पैसों से जुड़ी प्लानिंग अच्छी रह सकती है। घर की कुछ छोटी खुशी आपका मूड बना देगी। अपनी जरूरतों के साथ अपनों का भी ध्यान रखिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
3: जेमिनी मिथुन राशि,
2: आज बातचीत से कोई अच्छी बात बन सकती है। स्टूडेंट को पढ़ाई में नया टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों के लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
3: कैंसर कर्क राशि,
2: आज परिवार से मिला सपोर्ट आपको एनर्जी देगा। काम में धीरे धीरे अच्छे लेकिन अच्छे से आगे बढ़िए। आपकी केयर करते हैं जो, उनका साथ दीजिए। आज आप भी उनको पूछ सकते हैं फ़ोन करके, या उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज आपने या उन्होंने आपका साथ दिया तो आज बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग कुछ प्लानिंग बन सकती है। लकी कलर है वाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि,
2: आज आपकी मौजूदगी लोगों का ध्यान खींचेगी। काम में अपनी बात कॉन्फिडेंस से रखिए। किसी साथी की अच्छी कोशिश की तारीफ भी ज़रूर कीजिए। आपके ऑफिस में कोई स्टाफ है तो उससे बस पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, और कुछ हेल्प चाहिए आपको तो आप उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रह सकते हैं आज। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि,
2: आज पेंडिंग काम पूरा करने का अच्छा दिन है। स्टूडेंट थोड़ा रिवीजन करेंगे तो फायदा होगा। आंखों और दिमाग को बीच में छोटा सा ब्रेक जरूर दीजिए और अच्छा खाइए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
3: लिब्रा तुला राशि,
2: आज किसी अपने से प्यारी बातचीत हो सकती है। टीम वर्क से काम ज़्यादा जल्दी होगा और अच्छे से होगा। रिश्तों में छोटी सी केयर बड़ा फर्क ला सकती है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
2: आज करियर में कोई नया आइडिया काम आ सकता है। अपनी क्षमता को थोड़ा और आगे लेकर जाइए। काम का प्रेशर घर तक साथ मत लेकर आइएगा। लकी कलर बनेगा आपका पर्पल, लकी नंबर है 8।
3: सजिटेरियस धनु राशि,
2: आज कुछ नया करने का मन बनेगा। नई जगह या नए लोगों में अच्छी बात हो सकती है, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं। खर्च और मस्ती दोनों में थोड़ा सा बैलेंस जरूर रखिएगा। अपने बिल्स को चेक करते रहिएगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
3: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
2: आज आपके काम की सराहना हो सकती है। चाहे घर पर कर रहे हों चाहे ऑफिस में कर रहे हों, पैसों को लेकर थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग अगर बना लें तो आपका वीक बहुत अच्छे जाने वाला है और उसके साथ में आपका मंथ भी बहुत अच्छा जाने

करने वाला है. घर के बड़े बुजुर्गों का थोड़ा साथ वक्त मिलेगा और आपको उनको वक्त देना है. लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 5. एक्वेरियस कुंभ राशि, आज आपका अलग

0: अपने लिए कोई छोटी सी खुशखबरी या कोई चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है ज़रूर चुनिए, क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए कि जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है वही आपके दिन को और आपके मंथ को बहुत एक्साइटिंग बनाएगा और अच्छा रखेगा, खुश रखेगा। लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों काम पूरे कीजिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों की खुशी में शामिल रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम, राइज एंड शाइन में एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप समाचार आस्था से. आस्था आपको नमस्कार.
5: नमस्कार. शुक्रवार 11 सितंबर की सुबह प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मोशन रोगियों को बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने की पहल इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिंग ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की. वे बिना कोई फीस लिए मॉरिशस में रेडियोलॉजी और कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने में मदद करेंगे. विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों को चुना गया है. छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट दर्ज की गई है. OECD की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में विज्ञान में औसतन 3 अंक, मैथमेटिक्स में 9 और पढ़ने में 14 अंक की कमी आई है. संगठन ने जेनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग से इसके संभावित संबंध की ओर संकेत किया है. विपो के महानिदेशक दहांग तांग पहली आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस में है. विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज AI और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. विपो पैरेलल इंपोर्ट्स के लिए कानून बनाने में भी सरकार की मदद करेगा. मालागासी कारोबारी मामी गावातू मांग की जमानत की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. बेल एंड रिमांड कोर्ट में 12 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा. हल्की वर्षा के बाद भी जलाशयों की स्थिति में बड़ा सुधार नहीं आया है. महोबा का फिलहाल लगभग 39% भरा है, इसलिए पानी की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे. अमरीका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इन हमलों में करीब 3,000 लोगों की जानें गई थी. अवैध रूप से कचरा फेंकने के खिलाफ देशभर में जागरूकता अभियान शुरू. इस अपराध पर जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है. कचरा उठाने के लिए मोगी फैसिलिटीज को 6 नए वाहन दिए गए हैं. और अब चलिए बढ़ते हैं आज की मौसम की जानकारियों की ओर. मॉरिशस में ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है. ये चेतावनी आज सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी. पूर्वानुमान आज सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे. पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में कभी कभी बादल बने रहेंगे और हल्की वर्षा होगी. दोपहर बाद मौसम अधिकतर साफ रहेगा. हालांकि ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 20-23 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात में बादल छाए रहेंगे. मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर वर्षा होगी. न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15-17 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 19-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. कुछ स्थानों पर हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. शाम से हवा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी. खुले समुद्र में स्थिति बहुत खराब रहेगी. करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की कड़ी सलाह दी गई है. सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
3: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
3: Radio, Radio.

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गणपति बप्पा मोरिया 6:14 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहां पे हम सभी को गणपति बप्पा मोरिया कह रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो रिदम है, जो अभी ये ढोल नगाड़े बजे हैं, बस बहुत ही जल्दी आपको सुनने को मिलेंगे सभी घरों के पास, घरों के बाहर, और सारे झूमेंगे नाचेंगे। और हम भी यही कहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, हर फेस्टिवल इतनी ही खुशी और शिद्दत से इंजॉय करना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे।

0: गणपति बप्पा आ चुके हैं सभी के दिलों में, बस घर में पधारने वाले हैं, तो बस इंजॉय कीजिए गानों के साथ में इस मौसम को जो बाहर इतना ठंडा हो रखा है, हल्की हल्की बूंदे हैं, कहीं पे ओस है, और जो जो छोटी छोटी सी कहते हैं ना जो ड्रॉप्स होते हैं वो चेहरे पर जब पड़ती हैं तो एहसास होता है हाय कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो मुझे पता है कि घरों के अंदर इस समय सब लोगों ने नाश्ता करने की तैयारी कर ली होगी, कहीं चाय बन रही होगी और कहीं पे ऑफिस जाने की तैयारी हो गई होगी। तो बस आप तैयारी करते रहो, इंजॉय करो गानों को साथ में, बस अपने एक चीज़ ज़रूर लेके जाइएगा, अपने चेहरे पर मुस्कान। ये मुस्कान आपके दिन को बहुत सुपर बनाने वाली है। तो इंजॉय कीजिए गानों को और राइज एंड शाइन को हमेशा अपने दिल में रखिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: छह बजकर 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहां पर हम बहुत सारी शाइन के साथ और बहुत सारे गानों के साथ आते हैं, पर हम बिना मैसेजेस पढ़े कहीं नहीं जाते हैं। तो चलिए जी जुड़ते हैं कुछ मैसेजेस की तरफ। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं और सभी को गुड मॉर्निंग कर रही हैं, पर हम ये कहेंगे आपको कि आज आपकी लेट अटेंडेंस है, आप लेट आई हैं, इसलिए कल जल्दी आइएगा और जल्दी अटेंडेंस लगाइएगा। पर गुड मॉर्निंग आपको भी। रेखा जी साथ दे रही हैं और अंश अपने बेटे के लिए बस इतना ही कह रही हैं, अच्छी पढ़ाई करो और एक बड़े अच्छे इंसान बनो। तो सो नाइस, ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए और आपने बहुत सही कहा। मालिनी जी साथ दे रही हैं, डैरन, श्वेता, रविश, प्रशा, लुएशा, एना पादू फैमिली के लिए बहुत सारी विशेष के साथ में सभी के लिए कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और सभी को कह रही हैं हमेशा आपका दिन अच्छा जाए, क्या बात है। रवि जी साथ दे रहे हैं इंडिया से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू रवि जी। साथ में राहुल जी कुदनो जो कि तुकाराम जी हैं, वो सभी फैमिली, मराठी फैमिली को कथवोन से परुषी, प्रीति, प्रथमी, प्रिया, निष्का, नितिन, विशाल एंड यानिश को बेस्ट विशेस दे रहे हैं और कह रहे हैं गणपति बाप्पा मोरिया, और कह रहे हैं सभी के गणपति हैं। और मैं तो कहूँगा RM2 को भी कि बस सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे चलाते रहे जिससे उनका दिन भी बन जाए और उनका दिल भी खुश हो जाए। जी बिल्कुल, हम ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए मॉर्निंग से लेके रात तक बहुत अच्छे गाने चले, बट कोई भी ओकेजन होता है हम उससे रिलेटेड ज़रूर गाने चलाते हैं। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। भारती जी साथ दे रही हैं और विक्रम एंड हेमलता जी के लिए बेस्ट विशेज लेकर आई हैं और खुश हो रही हैं। किशन जी साथ दे रहे हैं और रिया एंड जिया के लिए बहुत सारा प्यार और बेस्ट विशेज लेकर आए हैं, और साथ में ईश्वरी देवी जी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। तो हम आप ही को यही कहेंगे, गाने इंजॉय कीजिए और अपनी मॉर्निंग को सुपर बनाइए।

सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: शुक्रवार 11 सितंबर की सुबह 6:30 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में रेडियोलॉजी और कैंसर के आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल, प्रोफेसर एडवर्ड लामशांगलिंग ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। उनके प्रवास के दौरान 12 रोगियों को विशेष इलाज मिलेगा। दुनिया भर में छात्रों का औसत परिणाम अब तक के सबसे निचले स्तर पर। OECD की पीसा रिपोर्ट में विज्ञान, मैथमेटिक्स और पढ़ने की क्षमता में गिरावट दर्ज, AI के बढ़ते प्रयोग पर भी प्रश्न। विपो के महानिदेशक डायन टांग पहली आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस में, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के सहारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर। मामी गावातुमांगा की जमानत की मांग पर बहस पूरी, बेल एंड रिमांड कोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में करीब 3,000 लोगों की जानी गई थी। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। ग्रेड 11 की दूसरी अवधि की मॉक परीक्षाओं में करीब 20 सरकारी कॉलेजों का परिणाम 50% से नीचे रहा था। छात्रों की भूमिका को लेकर तभी से चिंता बनी हुई है। अब OECD की नई रिपोर्ट ने भी इस गिरावट की पुष्टि की है। ये स्थिति केवल मॉरिशस में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखी जा रही है। संगठन का कहना है कि छात्रों का औसत परिणाम अब तक का सबसे के निचले स्तर पर पहुंच गया है। पीसा परीक्षा में 91 देशों के 15 वर्ष की आयु के 7,60,000 छात्रों ने भाग लिया। पिछले 3 वर्षों में विज्ञान में औसतन 3 अंक, मैथमेटिक्स में 9 और पढ़ने में 14 अंक की गिरावट आई है। नई खोज और रचनाओं से जुड़े अधिकारों के सहारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, सरकार और वाइपो इसी दिशा में काम करना चाहते हैं। महानिदेशक डायन टांग इस समय मॉरिशस की सरकारी यात्रा पर है। ये पहली बार है जब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई प्रमुख सरकारी दौरे पर देश आया है। कल उन्होंने विदेश मंत्री रितेश रामफोल से मुलाकात की। विदेश मंत्री का कहना है कि आने वाले समय में नई खोज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएंगे। डायन टांग के अनुसार बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकार इस काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रजनी बीकर,
1: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डायन टांग ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी से संबंधित मजबूतीकरण पर एक कार्य सत्र में भाग लिया। इसका मकसद रहा नवाचार, रचनाओं और कलात्मक रचनाओं को सुरक्षित रखने वाले इन अधिकारों को आर्थिक जरिया बनाना और रचनाकारों के लिए आय का स्रोत बनाना। डायन टांग ने कहा, हमारे विचार से मॉरिशस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर मजबूत नींव है। मॉरिशस के लिए अगले अध्याय के अंतर्गत ये देखना है कि मॉरिशस किस तरह पदार्थ या सेवा बन सकता है। नौकरी पैदा करना, निवेश आकर्षित करना, ठेकेदारों का समर्थन करना, ये भी कि किस तरह फाइनेंसिंग प्राप्त करने के लिए हिस्सेदार बन सकता है। बैंक गारंटी को लेकर इस कोशिश को ज्यादा आगे जाने के लिए मॉरिशस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समर्थन की मांग की है, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से स्थानीय पदार्थों का मूल्य बढ़ाना। रम, शक्कर और रोड्रिक्स के नींबू पहले से ही इस लेवल से फायदा उठा रहे हैं। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, इससे इन पदार्थों के लिए पहचान मिलती है। जब मंडी में ये सामान बेचे जाते हैं,

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब पदार्थों को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, निर्यात किए गए पदार्थ हैं। स्थानीय स्तर पर जो सामान तैयार किए जाते हैं, इन पदार्थों को रजिस्टर करने की संभावना है जीआई इंडेक्स के अंतर्गत। इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े कमर्शलाइजेशन और फाइनेंसिंग पर भी बातचीत चली। इन परियोजनाओं को अमल में लाने की दिशा में मदद पहुंचाने के वास्ते मॉरिशस में एक विशेषज्ञ भेजे जाने वाले हैं जो कानूनी ढांचे की तैयारी और वाहनों के कलपुर्जों तथा दवाइयों के लिए पैरेलल आयात को अमल में लाने की दिशा में कार्य करने में सहायता पहुंचाएंगे।
1: मोशन मरीजों के लिए अधिकाधुनिक इलाज जिसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर के इलाज के विशेषज्ञ एडवर्ड लमचाइनिन इसी दिशा में देश की मदद करना चाहते हैं। कल उन्होंने पोर्टलुई के ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। प्रोफेसर एडवर्ड लमचाइनिन बिना कोई फीस लिए अपना अनुभव और चिकित्सा ज्ञान मॉरिशस के साथ बांटना चाहते हैं। उनका उद्देश्य देश में रेडियोलॉजी और कैंसर के इलाज की आधुनिक सेवाओं को आगे बढ़ाना है। उनकी यात्रा के दौरान विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों को चुना गया है। सुमेरा अकबर अली।
0: प्रोफेसर एडवर्ड लमचाइनिन मॉरिशन डायस्पोरा के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त खोजकर्ता एवं डॉक्टर है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और मिनिमली इन्वेसिव ऑन्कोलॉजी के एक वैश्विक पायनियर भी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात के दौरान मुख्य रूप से मॉरिशन डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए सहयोग पर बातचीत की गई। साथ में 12 से अधिक मरीजों की जांच और कैंसर से पीड़ित मरीजों पर संभावित मिनी इन्वेसिव ऑपरेशनों पर भी। प्रोफेसर एडवर्ड लमचाइनिन ने कहा,
2: इस पहल से उम्मीद है कि हम कैंसर के इलाज में काबिलियतों को बढ़ा सकें। मैं जो सर्जरियां करता हूं, मुख्य फायदों में से ये हैं कि वो कम दर्द करते हैं, रिकवरी तेजी से होती है, जटिलताएं कम हैं और वो कम महंगी भी हैं। मॉरिशस की स्वास्थ्य सेवा को बेशक फायदा होगा।
0: मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और मिनिमली इन्वेजिव ऑन्कोलॉजी के क्षेत्रों में डॉक्टरों और क्वालिफाइड स्पेशलिस्टों की कमी है। प्रोफेसर एडवर्ड लमचाइनिन इन क्षेत्रों में मॉरिशन डॉक्टरों के प्रशिक्षण में मदद पहुंचाने का भी इरादा रखते हैं। वे नैनो नाइफ की मदद से एब्लेशन और रेडियो फ्रिक्वेंसी के प्रयोग करने में माहिर है। प्रोफेसर एडवर्ड लमचाइनिन ने हेपाटिक ट्यूमर से पीड़ित मरीजों में कई ऑपरेशंस भी किए हैं और साथ में यूनाइटेड किंगडम में कई प्रकार के कैंसर को लेकर भी, जिनकी बदौलत इन मरीजों की जिंदगी बढ़ पाई है।
1: हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि मालागासी कारोबारी ममी गवातुमांग की जमानत की मांग पर बहस कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में पूरी हो गई। मैजिस्ट्रेट अल्फाज फारूक नाथिया 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाने वाले हैं। सुमेरा अकबर अली।
3: दोनों पक्षों के वकीलों ने लिखित तौर पर अपनी अपनी बहस पेश की। वकील कुशल लुबिन सुडियत ग्रुप के सीईओ की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने 300 से ज्यादा दिनों तक नाइंसाफी से अपने मुवक्किल का कैद में रहे जाने पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में कोई विकास नहीं हुआ है। वकील त्रिशूल नागा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के वकील हैं। उन्होंने इस बहस पर आपत्ति जताई क्योंकि मलागासी उद्योगपति के फरार होने, उनका गवाहों के साथ बात करने और सबूतों में हेराफेरी करने के खतरे हैं। 24 अक्टूबर 2025 को एफसीसी की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार मामी गवातुमांग मेलगोज कैदखानी में हैं। उन पर मनी लॉन्डरिंग और साजिश रचने के अस्थायी इल्जाम दर्ज हैं।
1: यूनियन से मॉरिशस के बीच गांजे की कथित तस्करी के मामले में नया घटनाक्रम। गुलशन गोविंद के वकील रूबेन मुहंगा पीले ने बुधवार को आरोप लगाया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनके मुवक्किल और सांसद वेरोनिक लेगोविन से वकील बदलने को कहा था। आजसू का कहना है कि उसे इस आरोप की जानकारी है। उसने वेरोनिक लेगोविन को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन रूबेन मुहंगा पीले के अनुसार गुलशन गोविंद ने भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, मगर पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। September 11, 2001 के हमलों ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी कमजोर

बीमारी सामने ला दी है जहां आज से ठीक 25 साल पहले 11 सितंबर 2001 की उस सुबह ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुछ ही मिनटों में दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकराए। अमेरिका की आर्थिक ताकत का प्रतीक माने जाने वाले दोनों टावर्स पूरी दुनिया की आंखों के सामने रह गए। एक चौथाई सदी बाद भी इस बड़े आतंकवादी हमले को लेकर कई प्रश्न बने हुए हैं। हमले में करीब 3,000 लोगों की जाने गई थी। इसकी जिम्मेदारी ओसामा बिन लादेन ने के नेतृत्व वाले अलकायदा ने ली थी। तो CIA और FBI के पास अलकायदा और ओसामा बिन लादेन से जुड़ी जानकारियां तो थी, लेकिन समय रहते उसे आपस में नहीं जोड़ा गया। ये जानकारी BBC ने साझा की है। इन हमलों में 2,977 लोगों की जाने गई। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच जानकारी बांटने की व्यवस्था मजबूत की और आतंकवाद से निपटने के लिए नए केंद्र बनाए। फिर भी इराक युद्ध जैसे मामलों में जानकारी को समझने और सही फैसले लेने में बड़ी चूक होती रही। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस में ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी आज सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। पूर्वानुमान आज सुबह आसमान में कुछ बादल छाए रहेंगे। पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में कभी कभी बादल बढ़ेंगे और हल्की वर्षा होगी। दोपहर बाद मौसम अधिकतर साफ रहेगा, हालांकि ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में बादल छाए रहेंगे, मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और तटवर्ती इलाकों में 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कुछ स्थानों में हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। शाम से हवा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। खुले समुद्र में स्थिति बहुत खराब रहेगी। करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की कड़ी सलाह दी गई है। दिन के दौरान समुद्री लहरों की ऊंचाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:10 पर, शाम 6:03 पर सूर्यास्त।

देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। 29 अहगी स्ट्रीट बोबासमी 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की हलीमा करीमन इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुबह के 10:30 उन्हीं के मकान बोबासम से निकाल कर नमाज जनाजे के लिए डॉक्टर रेड और मस्जिद और सैमोते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। Funeral today at 10:30 AM. Royal Road, Petit Belair, Mayburg, Khattar Saleh ki 71 years old ki Shrimati Sita Bimal ki mrityu ho gayi hai. Paidaish naam Juman, log unhe Soba ke naam se adhik jante the. Unki arthi aaj din ke 1 baje unhi ke makan Mayburg se utha kar antim sanskar ke liye ilake hi ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation today at 1 PM. Kana Avenue, Katkokome, 66 साल की 66 years old की इंद्रानी देवी सिरतन की मृत्यु हो गई हैं। पैदाइश नाम सोमनाथ, लोग उन्हें देविका के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर दो बजे उनके बेटे शैलेंद्र सिंह सिरतन के मकान काटकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ब्रांच रोड न्यू कोव में 72 साल की 72

साल के श्री भीर सोना महादाऊ की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बाईसों के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे अभिषेक महादाऊ के मकान न्यूकोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिजानी रोजबल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू दी 3 PM। गिरधारी स्ट्रीट कत्सोमी 56 साल की 56 years old की सती सावित्री रामचंद की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम किस्तु, लोग उन्हें बबीता के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज शाम के साढ़े तीन बजे उनके पति इष्णु रामचंद के मकान कत्सोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। कौन जानेत रामासोमी लेन शमेंग्रोनियमे 82 years old की मिसिज कल्यामा चेती रंगन चेती की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उन्हीं के मकान शमेंग्रोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। Matahua Road, Contourilme, 88 years old की 88 साल की मिसेज जलक तामी रघुदयाल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंजल, लोग उन्हें बुल्की के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे आतिश रघुदयाल के मकान कौतुगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौतुगल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। रोवा एवेन्यू सर्कोंस्टांस सेंट पियर्मे 66 साल की 66 years old के राजू रामसामी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राज के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हीं के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू दी 3 PM। नंबर 13 रू डेनी पापिन विलियर्स सेंट पॉल फ्रांस मी 82 साल की 42 years old के जिमी ओडिटे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी फ्रांस के समयानुसार शाम के 4:30 PM उठाई जाएगी। खुद बासें कट्रोबोन में 70 साल के 70 years old के देवनानन मुदू की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी आरती बुदू के मकान कट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोमा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। एवेन्यू कौसामी मुकामी 85 साल की 85 years old के श्री कृष्णादत्त सिबरन की मृत्यु हो गई है। वे पहले रॉयल कॉलेज क्यूपिप में अध्यापक की हैसियत से काम करते थे। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के मकान मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सर्कोंस्टांस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:00 PM। न्यू रोड रोशनो में 89 ईयर्स ओल्ड की प्रभावती महेश की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी बेटी रानी हीरा के मकान खुशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पुरानी लास्को की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। बुलाकी लेन गुडलैंड्स में 67 साल की 67 years old की मिसिज चंद्रिका सेलिन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम नाईपाल, लोग उन्हें गीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन की 11 बजे उनकी माँ सबिता नाईपाल के मकान मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। जावियर रोड कस्कावेल में 36 साल की 36 years old केविन सोरोहाई की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कुनाल की के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पिता मनोज के मकान कस्कावेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुसोंच की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। मामसल जान गुडलैंड्स में 85 साल की 85 years old की यशुमती लखू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामेसर, लोग उन्हें दादी भानी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह के 10 बजे उनकी बेटी

संजीव लखू के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 10 AM। रॉयल रोड पेटी गफरी में 89 ईयर्स ओल्ड की मित्रावती सिबा की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सुन्यासी, उन्हें की अर्थी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान पर चिराफे से उठाकर

0: बेटी राज दुर्बीझा के मकान लफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड गांव बी में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की सकीला स्वाम्बो की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम लक्ष्मण, लोग उन्हें सकीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज शाम के चार बजे उनके पति रामेश स्वाम्बो के मकान घोंबी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए श्रमय वैंपिय घोंबी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

सुबह का ये प्यारा सा सफर यहीं तक था आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। अब आपको साथ मिलने जा रहा है नीतू शाह का, उनका साथ दीजिएगा और थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, गुनगुनाइएगा, अपने दिन को प्यारा बनाइएगा। मैं जाती हूँ, मेरी तरफ से बाय और नीतू की तरफ से थोड़ी देर में होने वाली है हाय।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Ghadi milate chaliye subah ke theek 7 baje hai.
5: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: गणपति बप्पा मोरिया.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अब जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि सुबह सुबह गणपति पापा का नाम जो ले लिया. 7:05. गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस नीतू आपके साथ, हमारा प्यार भरा

नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। यू आर ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती एंड बस इस खूबसूरत सफर में आप हमारी हम सफर बन गए हैं। थैंक यू सो मच। फ्राइडे मॉर्निंग 11th ऑफ सितंबर और बस ये दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। बहुत सारे भक्तगण जो है तैयारियों में लगे हैं, तो बस बप्पा का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सब पर रहे। एंड जितने भी लोग घर से निकल रहे हैं काम पर जाने के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, सबको बेस्ट ऑफ लक एंड बॉन कुराज। मौसम ठंडा ठंडा सा है लेकिन आपको वार्म कीप करने के लिए वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक यहाँ पर। यस ऑफ कोर्स 5499-1294 पर ओनली व्हाट्सएप पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। लोड्स ऑफ गेम्स, लोड्स ऑफ गिफ्ट्स, यानी कि गुड वाइब्स, कोजी मोमेंट, कोजी पीपल के साथ, लवली पीपल के साथ ऑन 5499-1294। एज आई सेड, ओनली व्हाट्सएप टुडे। तो बस नीतू आपके साथ टिल 9 AM, व्हाटएवर यू माइट बी, स्टे ट्यून्ड।

0: FM 2
1: Radio Musti.
2: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
3: Être bien sage.
2: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Kiki Fun Meal.
3: Ah ben, faudra être sage alors.
4: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu as envie avec Canal Plus inclus dans ton abonnement.
5: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
4: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
6: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
7: Mon Dieu!
8: Me prépare un top manger pour toi là.
7: Mon Dieu!
8: Un bon panier macni.
7: Mon Dieu!
8: Désistement avec Malay Panier. Mon Dieu même ça. Mon Dieu! Lien Malay Panier 100% naturel, li fondant et pénadisé l'azouté.
9: Mon Dieu panier, mon Dieu plaisir.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आजकल के दुनिया में ना जैसे चल रही है, लोग हैप्पी होना ही भूल गए हैं. बस इट्स वेरी गुड, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी. अगर आप हैप्पी होगे तभी तो बाकी सबको खुश कर पाएंगे. 7:17 में ना आपको खुश किया जाए. चले, इट्स टाइम फॉर रिशकों को. और जीतने पर हमारे लकी विनर को मिल सकती है टिकट्स टू सी एक जवाता. यस, आपको बताएंगे डिटेल्स. लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा सवाल हो जाए. सो 5499129499 पर सही जवाब भेजिए WhatsApp पर ओनली प्लीज. तो आप हमें बताएं, what do we call a bicycle that has only one wheel? What do we call a bicycle that has only one wheel? ये तो आपने देखे होंगे कि सर्कस में कैसे ये लोग राइड करते हैं. तो ये जो बाइसिकल है जिसमें एक ही व्हील है, इसको क्या कहते हैं? संकेत नफ नफ दूस नफ का पर 5499129494 प्लीज. अगर आपकी जीत हो गई है तो दूसरों को मौका दीजिए.

0: good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti.
2: कितना आसान सवाल पूछ लिया मैंने ना कि what do we call a bicycle that has only one wheel? और सही जवाब आप सब ने दिए. काश सबको हम टिकट्स दे पाते, लेकिन नहीं. एक ही लकी विनर है और आप हैं मिस्टर जयश्नव बाबूलाल वासना. हे बाबू, कंग्रेचुलेशंस. देखा, फ्राइडे आ गया, यानी कि फ्राइडे हो गया आपके लिए फन डे और आपकी जीत हो गई है. यस, सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन टिकट्स टू सियक जवाता. सो आप रेडी हो जाए फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक, थ्रिल्स, लॉफ्टर एंड स्पेक्टेक्युलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली. आप कैच कर सकते हैं सियक जवाता बागाटल विद शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 PM, साथ में सैटरडे एंड संडे आज एट 2:30 PM एंड 5:30 PM, सॉरी. एंड फॉर बुकिंग्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं 5250-9413. सियक जवाता, यू डोंट हैव टू मिस द मैजिकल बिग शो. सो कंग्रेचुलेशंस आपको, एंड बस हमारे लकी विनर आप बने. नेक्स्ट टाइम आपकी भी जीत हो सकती है. ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा.

0: A good beat for your morning show.
1: देखो भाई, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई शक बिल्कुल नहीं ना। तो साथ देने के लिए थैंक यू। सर्वश करी करते इस मिनट गोइंग टू वर्क बो कुराज वंस अगेन। एक बार फिर चलिए, आपको पैम्पर करने का टाइम आ गया है। वैसे यू लव इंडियन फूड, डोंट से नो, सब कोई पसंद करता है इंडियन फूड। सो अगर आप इंडियन फूड पसंद करते हैं, देन 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर एट सैफ्रन ग्रिल, ये आपके नाम हो सकता है। कैसे? यू जस्ट हैव टू प्ले एंड विन अ डेलिशियस इंडियन मील। यस, मॉरिशस गेट रेडी, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावांजा सीजन 4 is already here. Organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo, co-sponsored by MYOP and food partner for finals Giants Little India. तो बस ये जो थ्रिलिंग सीजन है, इसका किक ऑफ हो चुका था ऑन द 1st of August विद 6 पावर पैक्ड टीम्स, एंड नाउ इट कम्स डाउन टू द बिग फिनाले बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीटास वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस ऑन संडे। जी हाँ, ऑन संडे 13th of September। बस आपको हमें बताना है कहाँ। हाँ जी हाँ, ये जो ग्रैंड फिनाले है ऑफ द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावांजा वगांजा, ये होने वाला है संडे 13th, यानी को नेक्स्ट जो संडे आने वाला है। लेकिन कहाँ पर भाई, बस आपको हमें बताना है ऑन सैंक कट नफ नफ दोस नफ कट 54991294 पर। सही जवाब, पूरा नाम पता, जी हाँ पूरा नाम जैसे आपके आईडी में है, पूरा नाम पता हमें भेजिए ऑन 54991294। क्या पता ये जो वाउचर है आपके नाम अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए आपके लिए हो जाए।

0: A good beat for your morning show.
1: Radio Musti.
2: दिल तो definitely धक धक करता ही है कि कौन जीता कौन हारा. नहीं हारा तो कोई नहीं है क्योंकि सही जवाब आप सब ने दिए हैं. काश मैं कहती हूँ ना सबको दे पाते लेकिन एक ही लकी विनर हो सकता है. ये सबने आपसे पूछा था सवाल कि ये जो थ्रिलिंग सीजन किक्ड ऑफ ऑन 1st of August विद 6 पावर पैक्ड टीम्स, अब जो ग्रैंड फिनाले है इट्स बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीटास एंड कैंपस वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस ऑन संडे 13th of September. लेकिन कहाँ, ये था सवाल. ऑफकोर्स सही जवाब है एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू और ये होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है आज एट 10 AM. सो सही जवाब देने वाले हमारे लकी विनर है आप मिस्टर कृष्णा सिचन ऑफ मेजिन कॉन्डमास्क. Congratulations, bravo, आपकी जीत हुई है. So join us live at the ground for a day full of high energy cricket, fun and excitement. Cheer for your favorite team, enjoy good food and music and stand a chance to win exciting gift vouchers. Well, तो यहाँ पर आपकी जीत हो गई है. So आप इस cricket down of the year, showdown of the year, cricket Island Cricket Extravanza Season 4, the grand finale is on 13th of September at SSR National Cricket Ground Mapu aur 10 baje shuru ho jayega. So congratulations, aapki jeet ho gayi hai. No worries, aur bhi games hai, aur bhi gifts hai, aapko denge zarur.
3: Get ready, Mauritius. The grand finale of Island Cricket Extravaganza Season 4 is here. Organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by MYOP. This thrilling season kicked off on 1st August with 6 power-packed teams. Continental, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. And now it's time for the big finale. Continental Cheetahs versus Campus Abroad Lions होने वाला है on Sunday 13th of September SSR National Cricket Ground Mapu. Match starts at 10 AM. So join us live at the ground for the day full of high energy cricket, fun and excitement. Cheer for your favorite team, enjoy great food, music and stand chance to win exciting gift vouchers. All while Radio Musti goes live as from 11 to 2:30 PM. So do not miss the biggest cricketing showdown of the year with RM2 Radio Musti Island Cricket Extravaganza Season 4, the grand finale.

0: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: भाई सुबह सुबह जब अच्छी खबर आती है ना तो मूड भी अच्छा बन जाता है. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैन्यू इज बैक ऑन द ट्रैक. चलिए और भी अपडेट्स आपके साथ. अरविंद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू.
4: अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग आरएम2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. यूईएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की धुआंधार वापसी. सालों बाद चैंपियंस लीग में आकर 4-0 की जीत, वो भी ओल्ड ट्राफिड में. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक. हाँ, ये बात अलग है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड

0: यूनाइटेड के सामने एक ऐसी टीम थी जो चार क्वालिफाइंग राउंड पार करके पहली बार चैंपियंस लीग के लीग स्टेज में खेल रही थी। अज़रबैजान से सबा टीम को मौके मिले, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड कई प्रकार से, कई लेवल से बेहतर टीम थी। फर्स्ट हाफ में मैथ्यूस कुन्हा, ब्रूनो फर्नांडेज और सिस्को स्कोर कर पाए, फिर मार्टिनेज का गोल सेकंड हाफ में। 2020 से चैंपियंस लीग में ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी जीत है, हाँ स्कोर के हिसाब से। बायर्न म्यूनिख ने भी शानदार जीत हासिल की 5-0 से बोडो ग्लिंट को हराकर। ओलिजे का डबल, डेविस, केन और मुसियाला का एक एक गोल। फिर कोमो 4-1 से आरबी लाइप्ज़िग को हरा पाया, कोमो पहली बार चैंपियंस लीग में खेल रही हैं। फेनेरबाचे 1, एएस रोमा 1, पीएसवी आइंडहोवन 1, शाख्तार डोनेत्स्क 1, लॉन्स ने एवे जाकर स्लाविया प्राग को 3-2 से हराया। इंग्लैंड के लीग वन में स्टेवेनेज 2, ल्यूटन 1। आज के फिक्स्चर्स, इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वेस्ट हैम वर्सेस रेक्साम, स्पेन के ला लीगा में एफसी सेविला वर्सेस वेलेंसिया, जर्मनी के बुंदेसलीगा में यूनियन बर्लिन का मुकाबला शाल्के 04 से, इटली के सेरी आ में वेनेजिया वर्सेस फ्लोरेंटिना, फ्रांस के लीग वन में रेन मार्सेय। प्रीमियर लीग के चौथे सप्ताह के मैच, इस वीकेंड के मैच, कल एस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट, फिर बोर्नमुथ ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस इप्सविच, लिवरपूल फुलहम, ये सभी मैच 6 बजे खेले जाएंगे। फिर 8:30 बजे 8:30 किक ऑफ टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन, आर्सेनल के लिए लेट नाइट मैच 11 बजे संडरलैंड के मैदान में, और संडे मैच कोवेंट्री ब्राइटन और दी मैनचेस्टर डर्बी ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी का स्वागत करेगा। ये मैच 7:30 बजे 7:30 किक ऑफ। टेनिस, यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची अरीना साबालेंका और रिबाकीना। डिफेंडिंग चैंपियन अरीना साबालेंका ने सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला को हराया, और आज सुबह अभी से कुछ मिनट पहले रिबाकीना ने कोको गोव को हराया, रिबाकीना जो वर्ल्ड नंबर वन बनने जा रही हैं। लड़कों के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर वेरेव का मुकाबला काचानोव से होगा, चियाफुए खेलेगा शेल्टन के खिलाफ, दोनों यूएसए से हैं। क्रिकेट, विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। कल सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराया, प्लेयर ऑफ द मैच रही शेफाली वर्मा 64 रन, फिर दीप्ति शर्मा 3 विकेट ले पाई। आज दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, भारतीय टीम फाइनल में इंतजार कर रही है। उधर इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम 268 रनों से आगे है, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स चल रही है केवल 52 रन पर 2 विकेट 52 for 2। इंग्लैंड इनिंग्स जीत की तलाश में है। बॉक्स फ्रांसेज में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा हमवतन ग्रेगोरी तोमासू 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इधर रीजनल स्पोर्ट्स, रीजनल फुटबॉल में रोशनवा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस संडे को मैच है रिवियर जुरांपा की ब्लू एंजल्स टीम और बेजिटोंबो के बीच। क्रिकेट में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा के बारे में तो आपको जानकारियां मिल गई हैं RM2 पर, इसका ग्रैंड फाइनल इस संडे को 10 बजे मापू के SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में, MBC की RM2 टीम वहां रहेगी मैच डिटेल्स देने के लिए, और बहुत सारे गेम्स भी होंगे इस संडे को, मापू में जरूर आइएगा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर फिर से बता दें, टेरिफिक कमबैक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए चैंपियंस लीग में 4-0 की शानदार जीत। ऐसे ही जीतते रहो, संडे को भी मैच है लेकिन इस बार सबा नहीं मैनचेस्टर सिटी सामने है, देखेंगे क्या होगा। नमस्कार, हैव ए नाइस टाइम लिस्टिंग रेडियो मस्ती, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: देखो भाई, शेर तो खुल गए, उनको डहारने देते हैं, अपना काम करने देते हैं. 753 भागो नहीं तो भागो, लेकिन कहाँ भागेंगे अभी के दिल में भाई. थैंक यू सो मच. वेल, अभी के लिए इट्स टाइम टू विश समवन अ वेरी स्पेशल हैप्पी बर्थडे. यस, वी आर डिलाइटेड टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डे विद लव एंड लॉफ्टर, एंड एज पार्ट ऑफ योर बर्थडे ट्रीट यू आर इन्वाइटेड टू कलेक्ट अ वाउचर फ्रॉम लुलु हाइपर. तो लुलु हाइपर की तरफ से आपको ये वाउचर दिया जा रहा है आपके बर्थडे को और स्पेशल यादगार बनाने के लिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपसे बात नहीं हो पा रही है, और आप हैं हमारे आज के जो बर्थडे गर्ल वर्षा दौलतिया, आप रहती हैं खिश्मा फ्लाक. सो हम आपको कहेंगे ब्रावो, कंग्रेचुलेशंस. जीत तो हुई है क्योंकि आपका बर्थडे है. एंड हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए. एंड आपको सरप्राइज करने वाली थी आपकी नीस ईश्वरी, सीता मुनि एंड आपके पूरे परिवार. कोई बात नहीं, उनकी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको

नमस्ते। दुनिया भर में विद्यार्थी लोगन के पढ़ाई के स्तर में गिरावट आलबा। OECD के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा रिपोर्ट में विज्ञान मैथमेटिक्स और ई पढ़े के क्षमता में कमी दर्ज भइल बा। ई परीक्षा में 91 देशन के 760,000 विद्यार्थी लोगन हिस्सा लेलन जा। OECD ई गिरावट के जनरेटिव AI के बढ़त इस्तेमाल से भी जोड़ के देखता। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक दाहेन तांग सरकारी दौरा पर मोर्श से आयल हवन। इ संगठन के कोनो प्रमुख की पहला सरकारी मोर्शस यात्रा बा। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ भयल बातचीत में नवा खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई रचना से जुड़ल अधिकार के सहारे अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ावे पर जोर देवल गल। विपो पैरेलल इंपोर्ट्स खातिर कानून बढ़ावे में भी सरकार की मदद करी।

0: जिसके मरीज लोगन के आधुनिक इलाज देवे की तैयारी हुआ था जिनमें बड़ा ऑपरेशन की जरूरत कम पड़ी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड लामशानलिन ई काम में बिना फीस दे सके मदद करे चाहत हवन। उ काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से भेंट करलन। विशेष इलाज खातिर 12 मरीज के चुनल गलबा। मालागासी कारोबारी ममी गवातुमंगा के जमानत के मांग पर ही सुनवाई पूरा हो गलबा। बेल एंड रिमांड कोर्ट में दोनों पक्ष अपन बात रखलक। मजिस्ट्रेट इल्फाज फारूक नाथिया 12 अक्टूबर के अपन फैसला सुनयन। रेनविन और इमोशस के बीच गांजा की कथित तस्करी के मामला में नवाबाद सामने आलबा। वकील रूबेन मुहुंगा पीले आरोप लगायलन कि कुछ पुलिस अधिकारी गुरशन गोविंद और सांसद विरोनिक लुगोविन के वकील बदले के कहले रहलन जा। आज सुसांसद के शिकायत दर्ज करावे के कहले बा। बकीर वकील के अनुसार गुलशन गोविंद के शिकायत दर्ज करावे के अनुमति नहीं मिलल। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमला के आज 25 बरिस पूरा हो गल बा। 2001 में दुगो हवाई जहाज न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गल रहल। इन हमला में 2977 लोगन के जान गल। CIA और FBI के लगे अलकायदा से जुड़ल जानकारी रहल। बकिर सही समय पर ही एक दूसरा के नहीं देवल गल। एक बाद सुरक्षा एजेंसी लोग के बीच जानकारी बांट के व्यवस्था मजबूत करल गल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के ब्रिक्स समिट खातिर नई दिल्ली पहुंचल हवन। बैठक में यूक्रेन मध्य पूर्व के युद्ध और आर्थिक चुनौती पर चर्चा हुई। पुतिन ईरान के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट करियन। 2019 के बाद ई शी जिनपिंग के पहला भारत यात्रा बा। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार। हमनी के सुन लजा धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: North, South, East or West, tune into the very best. Radio Masti, your number one Belarus station.

0: संगे संगे तो हम नहीं हो चले था ऐसा वाह क्या बात है आज है फ्राइडे मॉर्निंग ऊपर से 8:09 ऊपर से भोजपुरी गाना यही तो है हमारी भाषा तो चलिए अपनी भाषा को आप हमेशा जीवित रखें और यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है आज भी ठंडी ठंडी हवाएं बहेंगी आज भी बारिश होगी आई डोंट नो चलिए एक साथ जानते हैं
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विथ विनर्स ओनली टू विनर्स
2: मॉरिशस में ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है ये चेतावनी आज सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी पूर्वानुमान आज सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में कभी कभी बादल बने रहेंगे और हल्की वर्षा होगी दोपहर बाद मौसम अधिकतर साफ रहेगा हालांकि ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 20-23 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा रात में बादल छाए रहेंगे मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर वर्षा होगी न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी कुछ स्थानों पर हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं शाम से हवा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी खुले समुद्र में स्थिति बहुत खराब रहेगी करीब 4 ऊंची लहरें उठेंगी मछुआरों नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की कड़ी सलाह दी गई है सूर्योदय सुबह 6:10 पर सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा
1: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti
4: Avis à tous les amoureux des animaux 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Le shampoing antibactérien Royal Pet à 169,95 € et 2,7 kg de pedigree pour chiot Chicken Egg Milk à 689,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
5: On est tous Winners!

0: भाई अंदाज चाहे जैसे भी हो लेकिन जोश जो है जज्बा जो है दिल में होनी चाहिए वो थे
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: Friday morning, 11th of September. Yes, ek aur shikoku ho jaye. Get ready to play and win with RM2. So you stand a chance to win two entry tickets. Dhyan se suniye bhai. You stand a chance to win two entry tickets to the grand finale of Fortis Beauty with a noble purpose. Miss India Worldwide Mauritius 2026. So mark your calendar for Saturday 12th September. Mani ki kal hai. At 7:30 PM at Triano Convention Center. So stay tuned to RM2. Play along. And grab your chance to be part of this spectacular night kyunki RM2 your chance to win starts here ab sawal bhi to pooch lo bahut hi aasan sawal hai agar aap bollywood follow karte hain like miss world miss universe wagera aap follow karte hain pageant to definitely aapke paas sahi jawab hoga aur 5499 1294 5799 2994 par as usual once again aapko apne sahi jawab please pura naam pura pata and aapka phone number to mil hi jayega aur jaise आपका नाम आईडी में है आपके आईडी कार्ड में है वो ही आप भेजिएगा टेल मी हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द मिस यूनिवर्स क्राउन हैं हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द मिस यूनिवर्स क्राउन बहुत ही आसान है मदद कर दूं 1994 में था अब तो आपको पता चल ही जाएगा 5499 1294 पर फटाफट

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: झूठा वाला प्यार कर पाओगे हमसे तनो हो गरीबा बात चले सच्चा सच्चा प्यार मोहब्बत करते हैं आपसे तभी तो आपको पैंपर करते रहते हैं सुबह शाम क्या पूछा था सवाल आपसे नीतू ने वेल हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द मिस यूनिवर्स क्राउन सही जवाब आप सब ने दिए हैं चले हमारी तरफ से आप सबको बाबू लेकिन सही जवाब है सुष्मिता सेन और एक ही लकी विनर को मिल रहा है ये जो गिफ्ट यानी कि आपको मिल रहे हैं टू एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड finale of Fortis Beauty with a noble purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026 कौन है लकी विनर कौन है आप हैं मिसेस नेहा हीरा और आप रहते हैं सेंजुले दुदमो यस तालियां तो बनते ही हैं ब्रावो आपको एंड आपकी जीत हो गई है सो कंग्रेचुलेशन कल सैटरडे 12 सितंबर को आज फ्रॉम 7:30 PM ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर वहां पर आप जा सकते हैं एंड देख पाएंगे हमारी जो मिस हैं और उनको फॉलो कर पाएंगे एंजॉय कर पाएंगे वेल टॉकिंग अबाउट सुष्मिता सेन 18 साल की थी जब उन्होंने 1994 में नेशनल कंटेस्ट में भाग लिया था और बस उनकी जीत हो गई शी बिकेम द मिस यूनिवर्स एंड वो मनीला फिलीपींस गई हुई थी और क्या बात है इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम मिस यूनिवर्स क्राउन जीत कर लाई और बन गई जबरदस्त एक्ट्रेस वैसे आप तो भी हमारी एक्ट्रेस है हमारी प्यारी लेडीज है सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन नेहा हीरा एंड बस आप एंजॉय करते रहे स्टे वेल ट्यून्ड

0: to Radio Musti. Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग के प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी. RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: इंसान की जुबान छोटी जरूर होती है, लेकिन उसमें किसी के दिल को छू लेने की बहुत बड़ी ताकत होती है। एक मीठा लफ्ज उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, किसी टूटे हुए दिल को हौसला दे सकता है और एक खूबसूरत रिश्ता बना भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में निकला हुआ एक कड़वा शब्द सालों के रिश्ते को पल भर में जख्मी भी कर सकता है। दैट्स व्हाई लाइफ में हमेशा अपनी जुबान को अपने दिल की खूबसूरती का आईना बनाइए। बोलने से पहले एक पल सोचिए, क्या मेरे अल्फाज किसी का दिल दुखाएंगे या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे? क्योंकि अच्छी जुबान सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलना नहीं, बल्कि अच्छे अल्फाज से दुनिया में थोड़ी सी मोहब्बत, इज्जत और पॉजिटिविटी बांटना है।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: रेडियो मस्ती
1: A good dose of music भी इसमें आप enjoy कर सकते हैं, add कर सकते हैं. 851, all right, thank you so much. चलिए बात हो रही है, बात बहुत सारे birthday wishes हैं यहाँ पर, thank you so much. लेकिन let's talk about परिणीति चोपड़ा. जी हाँ, परिणीति चोपड़ा क्या हुआ उसको? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, अभी मम्मी बन गई है and she's

डेब्यू करने वाली है आमीन नेटफ्लिक्स शक ट्रस्ट नो वन और इस शो के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने अपने शूटिंग जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कहा क्योंकि उस वक्त शी वॉज प्रेग्नेंट और बता रही थी कि कैसे उनके पति राघव जो थे भागे भागे आए जब उन्होंने सुना जब उन्होंने जाना कि शी वॉज प्रेग्नेंट एंड कैसे उसकी टीम जो है जो होल टीम उनको सपोर्ट किया और वो भी कहती है कि शक मूवी के साथ शक जो सीरीज है इसके साथ उनके बेबी नीर उनका बेटा है नीर उनका भी डेब्यू हो रहा है क्योंकि उसी दौरान तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो कहती है कि यस मम्मीज आजकल हमारी जो एक्ट्रेस बीट करीना बीट दीपिका बीट जो भी जितने भी हमारे एक्ट्रेसेस अभी कैटरीना भी मम्मी बन गई हैं यानी कि अब जो है बॉलीवुड उनको रिजेक्ट नहीं करती बल्कि उनको एक्सेप्ट भी करती है एंड दे कंटिन्यू देयर लाइफ और अपने एक्टिंग वो कंटिन्यू करती है सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर डेब्यू वेब सीरीज के लिए एंड बस इसमें कोई शक नहीं कि आपसे और भी प्यार करेंगे और आज भी वो गाना हमें याद है माना कि हम या नहीं अभी वो गाना नहीं चलाऊंगी अभी क्योंकि इट्स फ्राइडे मॉर्निंग एंड मूड को एकदम टकाटक बनाते हैं

0: नहीं तो अभी दूर है भाई, अभी के लिए इट्स ऑलरेडी 8:55, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय. चलते चलते लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू नितिश देव लक्ष्मण उर्फ भाई, एंड ये है शीतल शालू, माँ सविता, पापा ज्ञानेश्वर, सभी लक्ष्मण नायको कालीचरण फैमिलीज की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे टू यू टू. यहाँ पर है कौन? ओके, विशिंग धर्मराज सितल, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम वाइफ बबीता, अनिष्ठा, दीक्षा, दर्शिनी, तश्विन, रवीन, यनीश, अर्जुन, दिल, किरण, ग्रांसर्स, अथर्व, शिवांश एंड सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार.
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
0: संक्षिप्त समाचार, उसके बाद नीलमाली आपका साथ देंगी. टेक केयर, मिलती है वापस 12 से 2 के बीच इन रेट्रो रिदम.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Good morning. सुबह के 9 बजे हैं.
5: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान.

0: हाथ से हाथ छोड़।
1: तो देश विदेश के समाचारों के साथ इस स्टूडियो में आ गई हैं आस्था, चलिए उनसे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आस्था।
2: नमस्कार। नमस्कार। 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट। OECD के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा में विज्ञान, मैथमेटिक्स और पढ़ने के परिणाम कमजोर हुए हैं। परीक्षा में 91 देशों के 7,60,000 छात्रों ने भाग लिया। OECD जनरेटिव AI के बढ़ते प्रयोग से इसके संभावित संबंध को भी देख रहा है। अन्य खबरों में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के महानिदेशक दहिनतांग पहली सरकारी यात्रा पर मॉरिशस आए हैं। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। मॉरिशस में बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल, जहां इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर विशेषज्ञ एडवर्ड लामशांगलिंग ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से कल मुलाकात की। वे बिना किसी फीस लिए देश की मदद करना चाहते हैं। विशेष इलाज के लिए 12 रोगियों को चुना गया है। मालागासी कारोबारी ममी गवातुमांग की जमानत की मांग पर बहसें कल पूरी हो गई। बेल एंड रिमांड कोर्ट के मजिस्ट्रेट 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे। रूनियन और मॉरिशस के बीच गांजे की कथित तस्करी के मामले में नया घटना

0: वकील रूबेन मुरुंगा पीले का आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद और सांसद वेरोनिक लुगोविन से वकील बदलने को कहा था। आज सुनी सांसद को शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन वकील के अनुसार गुलशन गोविंद को इसकी अनुमति नहीं मिली। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में 2977 लोगों की जाने गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में यूक्रेन, मध्य पूर्व के युद्ध और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। पुतिन ईरान के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 2019 के बाद ये शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, हमें आ गया दीजिए नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: नमस्कार, 60 मिनट हुए हैं 11th ऑफ सितंबर फ्राइडे का दिन है, यानी कि फन डे। मस्ती मॉर्निंग में बड़ा सा वेलकम है आपका। हम है तो दर्द नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। यस, इट्स योर आरएम2 रेडियो मस्ती एंड 12 बजे तक नमनी यही पर।

0: है मस्ती मॉर्निंग शो में आपके होरोस्कोप के साथ गेम्स भी होंगी और आपके लिए लॉट्स ऑफ टिप्स भी, तो यही पर मेक श्योर स्टे कनेक्टेड। अभी के लिए नेक्स्ट गाना करते हैं आपके नाम में से फ्राइडे को फंडे बनाने के लिए।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: कुछ तू बता जिंदगी, वैसे जिंदगी बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ सिखा भी रही है। कभी कभी कुछ चीजें समझने में वक्त लगता है, कभी कुछ लोग और हालात खुद ही सबक बन जाते हैं, लेकिन आखिर में जो मायने रखता है ना, वो है कि हम रुक ना जाए, सीखते रहे, बढ़ते रहे और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनते रहे। तो आज शिकायत को कम करते हैं और हैप्पीनेस पर फोकस करते हैं, मस्ती पर फोकस करते हैं। इट्स नो मनी फॉर यू, आपकी ही मस्ती मॉर्निंग में। एंड जल्दी आप सुन पाएंगे अपना हॉरोस्कोप, जुड़े रहिए।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: And ये सभी के लिए सीधा बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप की ओर. क्या होगा, कौन से नंबर्स कलर्स होंगे आपके लिए लकी टुडे, चलिए जानते हैं.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज एनर्जी फुल ऑन रहेगी. जो काम पेंडिंग था उसको फिनिश करने का परफेक्ट दिन है. फ्राइडे मूड प्रोडक्टिव भी रखो. लकी कलर आपका है रेड और नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: Well, आज थोड़ा पैम्परिंग तो बनता है. काम के साथ अपने लिए टाइम निकालो. वीकेंड ऑफिशियली लोड कर रहा है. लकी कलर आज आपका है पिंक और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज कमाल करेंगे. बस ज्यादा बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना वरना गॉसिप का फ्राइडे स्पेशल बन जाएगा. लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: दिल खुश रहेगा और मूड भी हल्का फुल्का. किसी अपने के साथ क्वालिटी टाइम आज का हाईलाइट हो सकता है. लकी कलर का है सिल्वर और नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: फ्राइडे और स्पॉटलाइट नेचुरली आप पर ही है. कॉन्फिडेंस हाई रखो, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं. लकी कलर का है गोल्डन और नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज प्लानिंग कम और ओवरथिंकिंग उससे भी कम. जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो और फ्राइडे को एंजॉय करो बस. लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 4.
2: लीब्रा तुला राशि.
1: रोमांस हो या फ्रेंडशिप, कनेक्शंस आज स्ट्रांग रहेंगे. एक स्वीट सा मैसेज किसी का पूरा मूड बना सकता है. लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 7.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज इंट्यूशन पर थोड़ा ट्रस्ट करो. जो वाइब सही नहीं लग रहा है उससे डिस्टेंस बनाना परफेक्टली ओके है. लकी कलर का है मरून और नंबर है 8.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: एडवेंचर का मूड है. अगर वीकेंड प्लान्स अभी तक नहीं बने हैं तो आज कुछ स्पॉन्टेनियस कर सकते हो आप. लकी कलर का है ऑरेंज और नंबर है 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: काम का प्रेशर साइड में रखो. फ्राइडे को सिर्फ डेडलाइंस नहीं थोड़ा एंजॉयमेंट भी डिजर्व करते हो. लकी कलर आपका है ब्लैक और नंबर है 8.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज कोई अनएक्सपेक्टेड आइडिया या अपॉर्चुनिटी आ सकती है. माइंड को ओपन रखो और फ्राइडे को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होने दो. लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: आज आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी फुल पावर में है. म्यूजिक, आर्ट या सिंपली अपना फेवरेट गाना उस पर फोकस करो. मूड आपका ऑटोमेटिकली बेहतर.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: Musty Morning में साथ देने के लिए शुक्रिया. सच में आप स्पेशल हो. अरे नहीं नहीं, मस्का नहीं मार रही हूँ, बल्कि सच है. एंड क्योंकि आप स्पेशल हो, पैम्पर करना तो बनता है आरएम जो वीडियो मस्ती का. तभी के लिए गेम है आपके लिए, जहाँ पर आप जीत सकते हो एक नहीं बल्कि दो आखिरी टिकट्स कल के फोरेस्ट ब्यूटी विद नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वॉर मॉरिशस 2026 का. एंड ये सर फाइनल कल है. एंड सवाल है आपके लिए कि फाइनल कहाँ पर, किस लोकेशन पर हो रहा है. 5499124 पर आपको हमें बस ग्रैंड फिनाले का लोकेशन बताना है. गुड लक टू यू.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, सब के लिए मस्ती मॉर्निंग में गेम ऑन गोइंग है. मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 के दो आखिरी टिकट कैसे मिलेगा? क्वेश्चन सिंपल था, आपको बतानी थी ग्रैंड फाइनल का लोकेशन जो कि है ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर. एंड विनर हमारे बन चुके हैं. Congratulations to she Ashna Ram Kisun, jo ki plan ne de papai ke rehne wale hai. And yes, aapko mil gaya ro tickets to attend the grand finale of the 4 days beauty with a noble purpose. Miss India World Wild Mauritius 2026. Kal as from 7:30 at Triano Convention Center. And aapko bata dete hain ki tickets collect karne ke liye aapko aana hai aaj hi 3 baje se pehle. Thank you RM2 Radio Masti ke saath connected rehne ke liye. Abhi ke liye Masti Morning continues with Nirmani.
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार.
5: नमस्कार 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट. OECD के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा में विज्ञान मैथमेटिक्स और पढ़ने के परिणाम कमजोर हुए हैं. परीक्षा में 91 देशों के 60,60,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया. OECD जनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग से इससे संभावित संबंध को भी देख रहा है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के महानिदेशक दारेन टंग पहली सरकारी यात्रा पर मॉरिशस में. विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. मॉरिशस में बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल, जहां इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर विशेषज्ञ एडवर्ड लामशांगलिन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की. वे बिना फीस लिए देश की मदद करना चाहते हैं. विशेष इलाज के लिए 12 रोगियों को चुना गया है. मालागासी कारोबारी मामी गवातुमांगा की जमानत की मांग पर बहस पूरी हो गई है. बेल एंड रिमांड कोर्ट के मजिस्ट्रेट 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे. रेनियन और मॉरिशस के बीच गांजे की कथित तस्करी के मामले में नया घटनाक्रम. वकील रूबेन मुंगा पिले का आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद और सांसद विरोनिक गोविंद से वकील बदलने को कहा था. आज सुनिए सांसद को शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन वकील के अनुसार गुलशन गोविंद को उसकी इसकी अनुमति नहीं मिली. अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में 2,977 लोगों की जानें गई थी. CIA और FBI के पास अलकायदा से जुड़ी जानकारियां थीं, लेकिन इन्हें समय रहते आपस में नहीं जोड़ा गया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच जानकारी बांटने की व्यवस्था मजबूत की गई. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं. बैठक में यूक्रेन, मध्य पूर्व के युद्ध और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा होगी. पुतिन ईरान के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. 2019 के बाद ये शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. Twenty-nine Arigi Street, Bobasemi, 77 साल की 77 years old की हलीमा करीमन इंतकाल कर गई है. उनका जनाजा आज दिन के साढ़े

0: 10 बजे, आज सुबह के 10:30 बजे उन्हीं के मकान पुबसे से निकल कर दफनाने के लिए सैमोते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM. टागोर रोड रिश्मो फ्लक में 81 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहनलाल जगर की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें मोहन के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज शाम के 4:30 बजे उन्हीं के मकान रिश्मो फ्लक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: फ्राइडे मूड सेट करने के लिए था वो जग से लार्ज फ्रॉम कॉकटेल 2. तो बताओ, आपने पिक्चर देख ली है या फिर अभी भी आपकी वॉच लिस्ट में वेटिंग लिस्ट पर है? अगर नहीं देखी है तो वीकेंड के लिए एक ऑप्शन मिल गया. अभी के लिए फ्राइडे पर ही नजर रखते हैं, फोकस करते हैं. अगर इस दिन को फंडे बनाना है तो फुली

0: वेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं बाय सिपिंग वाटर। हर 15 मिनट को आप वाटर सिप करते रहिए क्योंकि हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। अभी के लिए लेट्स डाइव राइट बैक विद द गुड म्यूजिक दैट्स हैपनिंग ऑन योर आरएमटू रेडियो मस्ट। You can find me in the club,
1: bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: टू
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी। अल्लू काशियो गणेश चतुर्थी, फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस्ट प्लांट एपोता फ्लेयर पे ऑफर एंड डिस्काउंट स्पेशल लो सुबन गेलोंट बुके एक फ्लेयर दो टू बन मैगजीन अ ट्रैवेल इल लालमाची फ्लैक क्यू दे विल गुडलैंड्स क्यू दे विल रॉयल रोड गुडलैंड्स रिविया दु रंपो फ्लैक रिटेल पार्क बेलेर एक रिश्टेर मॉल। पोर प्लस रेंसेनमों कॉन्टैक्टे नू लो 57 96 92 24 57 96 92 24।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अभी के लिए बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं। आज जब वक्त है याद करने के लिए एक ऐसे हीरो का जिनकी कहानी हमने सिल्वर स्क्रीन पर शेरशाह के जरिए देखी, और वो है कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनका कैरेक्टर प्ले करके उनकी कहानी को हम तक जरूर पहुंचाया है, लेकिन कैप्टन साहब की असली कहानी वो तो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। 1999 के कारगिल वॉर के वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र मिला था, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड। एंड आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें सैल्यूट करते हैं और उनका वो आइकॉनिक स्पिरिट याद रखते हैं कि दिल मांगे मोर। कैप्टन साहब की कहानी एक फिल्म नहीं है, एक इंस्पिरेशन है, तो चलिए उसी मूवी का एक गाना हो जाए स्पेशली फॉर यू। आर एम टू रेडियो मस्ती पर ही।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: फ्राइडे फैशन टिप सिंपल है, फ्राइडे है बॉस, तो आउटफिट में भी वीकेंड वाली फीलिंग होनी चाहिए। आज का फैशन रूल है कंफर्ट प्लस कॉन्फिडेंस, परफेक्ट फ्राइडे लुक। जीन्स हो, ड्रेस हो या थोड़ा ग्लैम, बस एक स्टेटमेंट एक्सेसरी ऐड करो, सनग्लासेस, वॉचेस, इयररिंग्स या फिर वो किलर बैग। और याद रखो कि फैशन का सबसे जरूरी एक्सेसरी होता है आपका कॉन्फिडेंस, बाकी कपड़े तो बस सपोर्टिंग कास्ट है।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
2: Radio Musti.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: I like it.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गॉसिप पर टाइम रिव्यूज ने कहा कुछ और है, लेकिन बॉस ऑफिस ने कहा पॉपकॉर्न पकड़ो बेटा। यश यानी कि हमारी टॉक्सिक एक्टर मूवी ने 337 करोड़ कमा लिए हैं वर्ल्ड वाइड। मिक्स्ड और कंट्रोवर्शियल रिएक्शंस के बावजूद फिल्म के ऑडियंसेस फिर भी टर्न अप कर रहे हैं यश को एक्शन में देखने के लिए, फीचरिंग कियारा अडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और हुमा खुरैशी। मतलब क्रिटिक्स का ओपिनियन अलग हो सकता है, ऑडियंस का मूड अलग। अब देखना है कि टॉक्सिक 350 करोड़ क्लब में कितनी जल्दी एंट्री लेता है। तो आपने देख ली है टॉक्सिक या अभी भी सोच रहे हैं, पिक्चर देखें या रिव्यूज पढ़ें? अभी के लिए टॉक्सिक मूवी का ही एक गाना ला रहे हैं आपके लिए, आपके इस फ्राइडे को फंडे बनाने के लिए। लेट्स गो।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: 2 रेडियो मस्ती। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वैसे धुन आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही चला रही है. मस्टी मॉर्निंग का सेकंड आवर भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है. सी यू इन द नेक्स्ट वन. फॉर नाउ आदित्य नारायण की आवाज में ये नेक्स्ट गाना करते हैं आपके नाम.
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: दिन के 11 बजे है. एक बार फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था. नमस्कार.
4: नमस्कार. 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट. OECD के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा में विज्ञान, मैथमेटिक्स और पढ़ने के परिणाम कमजोर हुए हैं. परीक्षा में 91 देशों के 60,60,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया. OECD जेनरेटिव AI के बढ़ते प्रयोग से इसके संभावित संबंध को भी देख रहा है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के महानिदेशक दारेंटांग पहली सरकारी यात्रा पर मॉरिशस में. विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. मॉरिशस में बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल, जहां इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर विशेषज्ञ एडवर्ड लामशांगलिन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की. वे बिना फीस के देश की मदद करना चाहते हैं. विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों को चुन लिया गया है. मलागासी कारोबारी ममी गवातोमांग की जमानत की मांग पर बहसें पूरी. बेल एंड रिमांड कोर्ट के मजिस्ट्रेट 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे. रेनियन और मॉरिशस के बीच गांजे की कथित तस्करी के मामले में नया घटनाक्रम. वकील रूबेन मुंगा पिले का आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद और सांसद वेरोनिक गोविंद से वकील बदलने को कहा था. आज सुने सांसद को शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन वकील के अनुसार गुलशन गोविंद को इसकी अनुमति नहीं मिली. भारत और चीन के संबंधों में धीरे धीरे सुधार के संकेत. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं. 2019 के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी. शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी संभावित मुलाकात का विशेष नजर रहने वाली है. हाल के समय दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवाएं फिर से शुरू हुई. सीमा व्यापार और लोगों के बीच संपर्क भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है. हालांकि हिमालय सीमा से जुड़े विषय और व्यापार में असंतुलन अब भी बातचीत के प्रमुख मुद्दे हैं. अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 साल पूरे हो गए हैं. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में 2,977 लोगों की जान गई थी. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. कोंकावाल क्यूपिप में 77 साल के 77 के जनाब हसन भाई सालागन इंतकाल कर गए हैं. उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए दायर ए हबीब की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए क्यूपिप का कब्रिस्तान. फ्यूनरल टुडे एट 9:15. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 11:08. Good morning. And yes, वापस आ गए हैं नर्मनी मस्ती मॉर्निंग के तीसरे और आखिरी आओ में. तो कैसा चल रहा है मॉर्निंग, मस्ती भरा है या फिर डेडलाइन से भरी हुई? जो भी है हम साथ में सॉल्व करेंगे, सुलझाएंगे हर एक पहेली को. यस, गानों के बीच में आपके लिए टिप्स और गॉसिप्स भी लाते रहेंगे. नो वरीज, आप बस यहीं पर जुड़े रहिए. इट्स योर आर एम टू रेडियो मस्ती.
1: आर एम टू
0: रेडियो मस्ती.

0: toute la famille.
1: On est tous winners.
2: Get ready, Mauritius. The grand finale of Island Cricket Extravaganza Season 4 is here. Organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by MYOP. This thrilling season kicked off on 1st August with 6 power-packed teams, Continental, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. And now it's time for the big finale. Continental Cheetahs versus Campus Abroad Lions होने वाला है on Sunday 13th of September SSR National Cricket Ground Mapu. Match starts at 10 AM. So join us live at the ground for the day full of high energy cricket, fun and excitement. Cheer for your favorite team, enjoy great food, music and stand chance to win exciting gift vouchers. All while Radio Masti goes live as from 11 to 2:30 PM. So do not miss the biggest cricketing showdown of the year with RM2 Radio Masti Island Cricket Extravaganza Season 4, the grand finale.
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
4: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी चुरावन ब्रदर्स के साथ. यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स. चुरावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी. चुरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी सेंट्रल फ्लैग. फोन नंबर 4132651.
5: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे इश्क का तो पता नहीं, लेकिन फ्राइडे लाइफस्टाइल जब आज है कि वीकेंड के शुरू होने का इंतजार मत कीजिए टू रियली स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ. आज ना बस 10 मिनट लीजिए टू डू समथिंग जो कि आपको जेन्युइनली हैप्पी रखता है, करता है. जैसे कि अपना फेवरेट गाना चलाइए, ग्रैब अ कॉफी, थोड़ा सा वॉक पर जाइए, या फिर सिंपली बैठ कर इंजॉय कीजिए खामोशी को, क्योंकि लाइफ बिजी बिजी करने के लिए नहीं होता है यार, थोड़ा जीना भी ज़रूरी होता है. तो आज का रिमाइंडर है, मेहनत कीजिए लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना भी आप ना भूलिए. तो नेक्स्ट गाना आपके लिए ला रही है खासियत, चांद मेरा दिल मूवी से. होप यू एंजॉय.
3: रेडियो मस्ती सुनते रहो.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: आपको बताया दोस्त, अब बॉलीवुड में सस्पेंस का चैप्टर होने वाला है और भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अजय देवगन पूरा सेट हो चुके हैं अपने किरदार विजय सलगांवकर में वापस आने के लिए. एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दृश्यम 3 जो रिपोर्टेडली कंक्लूडिंग चैप्टर है और अपेरेंटली स्केड्यूल्ड हो चुका है फॉर अ रिलीज ऑन 2nd of October. और इस बार कास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग एडिशंस भी है. एक्शन हीरो राजी और गैंग्स ऑफ वैसेपुर फेम यानी कि जयदीप अलहावत विल बी सीन एज SP राजवीर, while Prakash Raj returns to the world of Drishyam. लेकिन इस बार एडवोकेट की तरफ, मतलब एक तरफ वी हैव विजय सलगांवकर, दूसरी तरफ पुलिस और ऊपर से एक लॉयर. एंड अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय इस बार भी पुलिस को चकमा दे पाएगा या फिर इस बार कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा जो हम सबको शॉक कर देगा. तो एक बात पक्की है कि दृश्यम में पॉपकॉर्न के साथ अपनी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी. अब के लिए दृश्यम 2 का एक गाना उठ जाए आप सभी के नाम.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: 92.2
1: रेडियो मस्ती।
0: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
2: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंट जोसेफ स्ट्रीट एंड औकात वेजनी, सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: मस्ती मॉर्निंग में इट्स 11:45 और जल्द ही लंच टाइम भी होने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि क्या खाया जाए तो आप ऑप्ट कर सकती हैं वेजी सलाद का या फिर अपने पसंद का कोई भी मीट डाल सकते हैं। तो आपको लेना है एक बोल, उसमें आपको रंग बिरंगी वेजिटेबल्स डालने हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स, अगर हो सके फ्रूट्स भी डाल दीजिए और अपने पसंद का कुछ भी डाल दीजिए एंड फिर ऐड करना एक अच्छा सा सीजनिंग। इससे ना आपको स्वाद भी आएगा और एपेटाइट भी। तो आपको विश करती है बोन अपेटी। एंड अगर जल्द ही आप ब्रेक पर जाने वाले हैं, अगर ड्राइव करके जा रहे हैं कहीं पर भी, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

इसी गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर मी टू से बाय. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग योर आरएमटू रेडियो मस्ती एंड अपना फ्राइडे मॉर्निंग मेरे साथ स्पेंड करने के लिए. मिलेंगे जल्द ही जल्द. एंड टेक केयर, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुड वाइब्स को जारी रखें.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: दिन के 12 बजे हैं। सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे आस्था नमस्कार।
5: नमस्कार 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर केवल मॉरिशस में ही चिंता का विषय नहीं है। OECD की नई पीसा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों में छात्रों का औसत प्रदर्शन रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। 3 वर्षों में विज्ञान यानी साइंस में 3 अंक, मैथमेटिक्स में 9 और पढ़ने की क्षमता में 14 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। इस अध्ययन में 91 देशों के 7,60,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। बड़े ऑपरेशन के बिना कैंसर का बेहतर इलाज संभव। मॉरिशस में ऐसी आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को विकसित करने की तैयारी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड लामशांगलिन ने इस दिशा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। वे बिना कोई फीस लिए देश के डॉक्टरों के साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करेंगे। इस बीच विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों की पहचान कर ली गई है। रीयूनियन मॉरिशस गांजा तस्करी जांच अब पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भी चर्चा में है। वकील रूबेन मुहंगा पिले का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने उनके मुवक्किल गुलशन गोविंद और सांसद विहोनिकल गोविंद से वकील बदलने को कहा था। आज सुने सांसद को औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। हालांकि वकील का कहना है कि गुलशन गोविंद की शिकायत पुलिस ने दर्ज नहीं की। 25 वर्ष बीत गए हैं लेकिन 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों की स्मृति, उनकी यादें आज भी अमेरिका और पूरी दुनिया में जीवित। इन हमलों में 2,977 लोगों की जान गई थी। बाद की जांच में सामने आया कि CIA और FBI के पास अलकायदा से जुड़ी जानकारियां थीं लेकिन उन्हें समय रहते एक साथ नहीं जोड़ा गया। इस त्रासदी के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बदली और एजेंसियों के बीच सहयोग मजबूत किया। सीधे विमान सेवाएं फिर से शुरू हुई। सीमा व्यापार भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अब दुनिया की नजर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर है। शी जिनपिंग 2019 के बाद पहली बार भारत जा रहे हैं। हालांकि हिमालयी सीमा विवाद और बढ़ता व्यापार असंतुलन अब भी दोनों देशों के संबंधों की बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये मुलाकात बताएगी कि हाल के सुधार को दोनों देश कितनी दूर तक आगे ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कोंकावाल क्यूपिप में 77 साल के 77 years old के हसम भाई सालारन इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 12:15 उन्हीं के मकान क्यूपिप से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कोंकावाल क्यूपिप के दायर ए हबीब मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए भी गहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:15। रामधनी लेन पोंपखाले में 43 साल की 43 years old के जसबीर रामधनी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें गासों के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थिक कल शनिवार 12 सितंबर को दिन के 11 बजे उनके पिता लोल रामधनी के मकान पोंपखाले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंच की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो At 11 AM, शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: रेट्रो रिदम।
1: भावरों की तरह हम भी भिन भिनाते हुए चले आए। अभी तो ऐसा लग रहा है आपको छोड़कर गए थे ना, तो वापस हम भी चले आए हैं। दिन के 12:09। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। हाँ हाँ, थोड़ी सी नाक बह रही है, थोड़ा सा जुकाम तो नहीं लेकिन अभी मौसम का असर है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वैसे आपके दिल का ख्याल तो हम रखेंगे डेफिनेटली इन 2 घंटों के सुरीले सफर रेट्रो रिदम में। टाइम टू टेक यू डाउन मेमोरी लेन, नोस्टाल्जिया लेन में स्वागत है आपका। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ओनली व्हाट्सएप के जरिए। हाँ हाँ जी, 7999299 पर आप अपने व्हाट्सएप भेज सकते हैं, अपनों के नाम, पैगाम, कोई गाना सुनना चाहते हैं। तो नीतू आपके साथ बिना देर किए हुए चले एक खूबसूरत गीत की ओर बढ़ते हैं। लता जी एंड किशोर कुमार की आवाजों में

0: मैं भी हूँ भाई।
1: रेट्रो रिदम,
0: व्हाट अ लवली गाना, किशोर कुमार लता जी की आवाज है। मैं कहने ही वाली थी फिल्म का नाम लेकिन रुक गई, फिर सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए इस फिल्म का नाम। यस, आप हमारे साथ खेलिए प्ले विद आरएम टू, और जीतने पर हमारे लकी विनर को मिल सकते हैं टिकट्स, वो भी सियक जवाता है जी।

0: ready for an unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances for your whole family. तो आप हमें बताएं कि अभी ये जो गाना आपने सुना, दिल तेरा ही, मेरी आवाज निकल नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपने गाना एंजॉय किया, किशोर कुमार लता जी की आवाजों में ये किस फिल्म का गाना था? फटाफट 5499129479999 पर ओनली व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा 5499299 पर, बताइए जो गाना अभी आपने सुना किस फिल्म से लिया गया था।
1: ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए,

पहले आपसे पूछा था हमने सवाल कि थोड़ी देर पहले जो गाना आपने सुना किस फिल्म से लिया गया था, एक और सवाल हो जाए इसी पर, आप हमें बताएं कि ऑन विच टू डेज वीक डेज द सीएक आशिल जवाता परफॉर्मेंसेस हेल्ड एट 5:30 PM। जी हाँ, आप हमें बताएं किन दो दिनों में, यानी कि वीकडेज में किन दो दिनों जो सीएक आशिल जवाता है उनके परफॉर्मेंसेस होते हैं एट 5:30 PM।

0: 80s and 90s बस यादों को ताजा कर जाती है।
1: रेट्रो रिदम।
0: क्या बात है नीतू, एक से भले दो दो दो सवाल पूछ लिए मैंने। हाँ, पहला था कि वो जो गाना आपने सुना दिल मेरा, दैट वाज इन द वॉइसेस ऑफ किशोर कुमार लता जी, फिल्म का नाम बॉम्बे टू गोवा। और दूसरा सवाल जो आपसे पूछा था कि ऑन विच टू वीक डेज द सिया काशिल जावाता परफॉर्मेंस इज हेल्ड, वो भी शाम के 5:30 बजे। सही जवाब है थर्सडे एंड फ्राइडे। आज है फ्राइडे माने कि शाम 5:30 बजे अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली देख पाएंगे। सही जवाब देने वाले हमारे पास बहुत सारे नाम है। थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। कोई बात नहीं, एक ही का तो यानी कि लक साबित हो गया है यहाँ पर। और आप है कौन? बेल्ला। ओके बेल्ला, सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी जीत हुई एंड यू आर विनिंग टिकट्स टू सिएक जावाता। सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक, थ्रिल्स, लॉफ्टर एंड स्पेक्टेक्युलर सर्कस परफॉर्मेंसेज फॉर योर होल फैमिली, पूरे परिवार के साथ। सो कैच सिएक जावाता एट बागातेल विद शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 PM और वीकेंड में यानी कि सैटरडे एंड संडे 2:30 PM एंड 5:30 PM onwards। फॉर बुकिंग एंड इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं 5 250 94 13। सिएक जावाता, डोंट मिस द मैजिकल बिग शो। तो चलिए, आपको आना है MBC एंड आप अपने जो टिकट्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं 5499-1294 पर। बस आप ही अपने जो डेडिकेशंस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नेक्स्ट गाना आपके नाम विश्वानी दुमन फ्रॉम वाकवा कहती है प्लीज। सहेली है नीला, प्रतिभा, शोभा, बहन है इंदिरा एंड शारदा और सब भी परिवार के नाम और सबको विश कर रही है मंगल कामनाएं गणेश चतुर्थी की।

0: to Radio Musti.
1: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépare-vous pour un moment magique et un bon spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudis et vendredis, 18h, achetez des billets, gagnez un gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et bonne l'école, compagnie et bonne groupe, nous pas fin oublier vous. Nous avons un package spécial pour vous avec bon spectacle à partir 11h. Allô, qui se piatan? Réserve votre place à la même l'eau 50 94 13.
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2 Radio Musti.

बस अपनी नैया को पार लगाते हुए आपका साथ जो मिल रहा है. थैंक यू. प्रणाम, कैसे हैं भाई महेंद्र? आप कहते कि बॉम्बे टू गोवा वॉज द फर्स्ट मूवी ऑफ बिग बी मॉरिशस में दिखाए गए थे. क्या बात है, आपको ये सब छोटी छोटी बातें अभी भी याद हैं. इसीलिए तो कहते हैं यादें ना बातें भी भूल नहीं पाते हैं और उन यादों को भी ताज़ा कर रही है. आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294. इतना लंबा मैसेज ये आपका ही हो सकता है जाना. आप वो फ्रॉम फ्लैक और रेडियो मस्टी के साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू. रीमा, जनीता, श्रेष्ठा, अंशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिवसरन परिवार के नाम मैं ढूंढ रही हूँ आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं. कोई बात नहीं, मैं ढूंढते ढूंढते पता भी चल जाएगा और नेक्स्ट गाना आपके नाम भी चलाएंगे यहाँ पर. थैंक यू सो मच. एंड आपको भी विश्वानी गाना आपको अच्छा लगा. थैंक यू.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: कैसे है सुरेखा फ्रॉम कैथ्रो कोको कहती है जिंदगी के सफर में देखो भाई इतने सारे गाने हैं जिंदगी के सफर से शुरू करते हैं कौन सा वाला आपको पसंद है 5499-1294 पर ललित एंड चेतन फैमिली गुड आफ्टरनून नमस्कार लंच टाइम और गाने सुन सुन कर बस जैसे कहते हैं ना अच्छा लगता है तो बस एंजॉय करते रहे Back to the 90s, ये है सोल्जर ऑफ कोर्स सोल्जर जब बात करते हैं तो याद आते हैं बॉबी देओल उनके घुंघराले बाल एंड प्रीति जिंटा

घोषणा से आप आजू फैमिली कहते हैं कि ओसम वेदर और ओसम ट्रैक्स ऑन एयर. यस थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह साथ निभाते रहते हैं. एंड हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे टू अंशिला गजाधर सारा फ्रॉम कॉन्गो एंड लव फ्रॉम ऋषि योबम कोयल कोइना शकीला शक्ति एंड कोको. सब आ जाए लेट, शम्मी कपूर साहब ना आए भाई, लेट हो गए हैं लेकिन आज भी उनका जो करिश्मा है वो आज भी जिंदा है. यस आसमान से आ गए हैं, टपक गए हैं हमारी जिंदगी में ऑन 5499924. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए.

हम तो वादा करते ही रहते हैं कभी नहीं होंगे जुदा, जब तक है जान भाई साथ निभाते रहेंगे। वैसे मौसम कैसा है आपके यहाँ 5499 1294 पर?

0: आपको तरसाएंगे बिल्कुल नहीं। 12:56 बस 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। अपना नाम भेजते रहिए ऑन 5499-1294। वेरी गुड आफ्टरनून रेखा, साथ में राकेश, बुधन, आपके फ्रेंड्स कल्याणी, इंदिरा, शालिनी, बेटा अंश, और हमारे लिए थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है भाई?
1: मैं प्रण।

लाम शांडलिन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया। इंपीरियल कॉलेज लंदन में कार्यरत इस मॉरिशस मूल के डॉक्टर ने मॉरिशस में अपने ठहराव के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मॉरिशस के डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के साथ साथ कैंसर से पीड़ित रोगियों की जाँच करने और उनकी सर्जरी करने की इच्छा जताई है। पर्यावरण मंत्रालय अवैध कचरा फेंकने और गैर कानूनन डंपिंग के खिलाफ रुख कर रहा है। इस तरह कोटो में मोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। ये घोषणा नए उपकरणों के हस्तांतरण के दौरान की गई, जिसमें भारतीय सरकार के समर्थन से उपहार में दिए गए 6 कचरा ट्रक भी शामिल। ये अभियान स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से चलाया जाएगा ताकि आम जनता तक सीधे पहुँचा जा सके। पिछले सप्ताह से ये पता है कि मॉरिशस अपना विमानन क्षेत्र खोल रहा है। इसकी शुरुआत एक प्रशासनिक परिषद कायम होने के साथ होती है। आने वाले दिनों में नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह 3 सितंबर को इस बात का ऐलान किया था। 2001 से लेकर 2004 तक एक्सेस एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य रहे सेन रामस्वामी ने कहा कि इससे देश के लिए भारी संभावनाएं खुलेंगी। उनके अनुसार हम विमानन परिवहन के लिए एक इलाकाई हब बन सकते हैं, खासकर व्यवसाय और कारोबार के लिए। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। 2026 में 9 सितंबर आतंकी हमलों को 50 साल पूरे हो रहे हैं। एक चौथाई सदी बीतने के बाद भी उस दिन की तस्वीरें और पीड़ितों की कहानियां दुनिया की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। 9 सितंबर ने ये दिखाया कि आतंकवाद का असर केवल तत्काल होने वाली जनहानि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो देशों की सुरक्षा नीतियों, वैश्विक कूटनीति, समाज और आने वाली पीढ़ियों की सोच में भी प्रभावित करता है। आज भी 11 सितंबर दुनिया को उन हजारों निर्दोष लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने उस भयावह दिन अपनी जान गंवाई, और उन लोगों के साहस की भी याद दिलाता है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए। रुख करते हैं भारत। दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार से यानी कि कल 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, अबूधाबी के शहजादे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख समेत कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के 15,000 जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। टैगोर रोड रिश्मा फ्लक में 81 साल के 81 years old के श्री मोहनलाल जगर जो मोहन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके घर टैगोर रोड रिश्मा फ्लक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा फ्लक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM। शुक मेरुबी इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: एक बज चुका है, चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और मिनिमल इन्वेसिव ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञ प्रोफेसर एडवर्ड

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: Retro Rhythm
3: RM2 Radio Musti

0: Actu.
1: Radio Musty.
0: Des projets plein la tête? Avec la SICOM My Speedy Loan, prenez les devants pour faire de votre envie une réalité, telle que l'achat ou la rénovation de votre chez vous, de voyage ou le financement des études des enfants, ou encore de s'offrir une nouvelle voiture avec la SICOM. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre un prêt d'un maximum de 300 000 roupies sans garantie et donner un nouveau souffle à vos projets avec la SICOM My Speedy Loan. Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 203-84-70 ou visitez notre site web sicom.me.
2: SICOM Group, a lifetime commitment.
0: SICOM Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
3: RM2
1: Radio Musty.
4: एक बजकर 10 मिनट, वेलकम बैक. आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. साधना और मुकेश लाल माची से हैं आप, और बस साथ निभाते हुए गुड आफ्टरनून विश करेंगे डेफिनेटली आपको यलेश एंड शाह फैमिली. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, चले आज सफर में आप ही हमारे हम सफर बने हुए हैं. थैंक यू सो मच. अरेर बाबा रुक जाना,
5: रुक जाना,
4: रुक तो गई,
5: रुक जाना.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: मौसम इतना लवली है, इतना औसम है, आपका साथ मिल रहा है, आपके मैसेजेस प्यारे प्यारे ऑन 5499 1294 1:13 हुए हैं। तो चलिए अर्का याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू की आवाजें, दिल है तुम्हारा कब का हो चुका है भाई। थैंक यू बबीता पोकोरबिल से कहती है नेक्स्ट गाना, तो ये गाना आपके नाम पूरे परिवार के लिए।

0: कितनी खूबसूरत बात है ना कि वादा कर जाते हैं प्यार में और कितने अनलकी हो जाते हैं जो वादे जो कर जाते हैं लेकिन वादों को तोड़ भी देते हैं. हाउ अनरोमांटिक.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.
0: लेकिन कभी कभी हम भी सोचते हैं अगर ये दिल ना होता तो हम जीते कैसे, शायद जी भी लेते लेकिन प्यार का एहसास कैसे कर पाते अगर दिल ना होता. समझो, सोचो, सोचे समझे इस बात को. अगर हम समझ जाए तो शायद जिंदगी भी आसान हो जाए. 1:25. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस. हे राधा, कैसे हैं?

आप काम पर है बोकुगाज और लंच टाइम खत्म, लेकिन गानों का सिलसिला खत्म नहीं होता है। आपका रेडियो आपके ट्रांजिस्टर आपके पास है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है। थैंक यू।

मिस्टर श्याम कहते हैं अभी मैं बाजार में हूँ और खरीदारी कर रहा हूँ और साथ में प्यारी सी पत्नी भी है। हेलो जी नमस्ते, जितने भी लोग बाजार में काम कर रही है तो सबको वो कुगाश डेफिनेटली, और बस खरीदारी के साथ इन गानों का भी मजा ले रहे हैं 5499 1294 पर। और हेलो जी, अगला गाना मीता सीला करुणा के लिए जो मौताबा से है। चाहे आप मौताबा से है, मौताबे से हो, किसी भी कोने से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश सात समुंदर पार, एनीवेयर रेडियो

डेफिनेटली ये मुलाकात तो बस एक बहाना है और ऐसे गाने हमेशा यादगार एकदम फ्रेश लगेंगे। एक बजकर 42 मिनट वेल टॉकिंग अबाउट द 1970s, तो बॉलीवुड के 70s के गीतों की बात ही कुछ और थी, आप मानेंगे है ना। ये वो दौर था जब हिंदी फिल्म म्यूजिक सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं था बल्कि कह सकते हैं दिल की आवाज़ हुआ करते थे। हर गाने में एक कहानी होती थी, एक एहसास होता था और सबसे खास बात वो एहसास सीधा सुनने वाले के दिल तक पहुंच जाता था। अभी जो नेक्स्ट गाना है शायद आपको और भी अच्छा लगे और बस चलते चलते ये भी गाना आपके नाम। वेल थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 1:48 है। थैंक यू सो मच अमिता, गुडलैंड से हैं आप। पति के नाम वेद, बेटी मेघना, बेटा नितेश, दिव्या के लिए एंड RM2 टीम थैंक यू सो मच। बस जिंदगी के सफर में अगर आप अकेले समझ रहे हैं अपने आप को तो बिल्कुल नहीं, हम हैं ना, मैं हूँ ना, रेडियो मस्ती आपके साथ।

कितने भाव कितने फीलिंग्स हैं इस गीत में ना, काश जो चले जाते उनको रोक पाते या उनको वापस ले आते, लेकिन दैट्स लाइफ, लाइफ कंटिन्यूज और हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारे जाने का टाइम भी आ गया है। यस 1:54 दो बजे के समाचारों के बाद परी के साथ बॉम्बे टॉकीज मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन हैव अ सेफ डे अहेड, बॉन विकेंड एंड बाय बाय।

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 2 baje hain. एक बार फिर सुनते हैं आपसे रजनी, देश विदेश की खबरें. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं परिवहन संबंधी इस खबर के साथ. कार्बन की मात्रा कम करना और हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, इस ट्रांजिशन में तेजी लाने के वास्ते निजी ऑपरेटरों से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से गुजरने की मांग की जा रही है. एक इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की फाइनेंसिंग मुमकिन. बहुत जल्द UNDP और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित प्रोमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के संदर्भ में ये सहायता राशि बढ़ाई जाएगी. पिछले सप्ताह से ये पता है कि मॉरिशस अपना विमानन क्षेत्र खोल रहा है.

की शुरुआत एक प्रशासनिक परिषद कायम होने के साथ होती है। आने वाले दिनों में नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह इस बात का ऐलान किया था। 2001 से लेकर 2004 तक रहे एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य सेनराम सामी ने कहा कि इससे देश के लिए भारी संभावनाएं खुलेंगी। उनके अनुसार हम विमानन परिवहन के लिए एक इलाकाई हब बन सकते हैं, खासकर व्यवसाय और कारोबार को लेकर। इन पिछले कुछ दिनों में काफी बारिश हुई है, लेकिन हमारे जलाशयों को भरने के लिए ये पर्याप्त नहीं। CWA के महानिदेशक श्यामतानु के अनुसार माओवाकवा अभी भी 39% भरा है। उनका कहना है कि करीब 40% होने पर भंडारण का संचालन अच्छी तरीके से किया जा सकेगा, जबकि 20% से कम होने पर स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप पाबंदियां बरकरार हैं। CWA मौजूदा भंडारण को नवंबर दिसंबर महीने तक बनाए रखना चाहता है। साथ ही बारिश की स्थिति पर भी नजर है, जिसके बाद ही संभावित बदलाव स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। विदेश समाचारों में भारत में दिल्ली के भारत मंडपम में कल 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू। सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, आबूधाबी के शहजादे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख समेत कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस तरह 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के 12,000 जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई है। भारत मंडपम में होने वाले सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली के संवेदनशील इलाकों और विदेशी मेहमानों की आवाजाही वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। म्यांमार के दूसरे सबसे व्यस्त मंडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सुरक्षा सूत्रों ने AFP को इसकी पुष्टि की। ये फैसला एयरपोर्ट पर हुए उस ड्रोन हमले के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें सैन्य समर्थित सरकार ने लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों पर सुसाइड ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया था। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: और गणपति बप्पा मोरिया के नाम के साथ इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करते हैं आज का फ्राइडे आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आया है। वैसे दोस्तों, जब फ्राइडे आता है खुशियां लेकर ही आता है, बिकॉज वीकेंड की खुशबू साथ लेकर आता है। सो वेल, इट्स 11th ऑफ सितंबर और आप सभी का वार्म वेलकम ऑन RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड सम लेटेस्ट ट्रैक्स। सो आई एम श्योर दैट आज का ये फ्राइडे होने वाला है मस्त, जबरदस्त। और अगर फ्राइडे की शुरुआत मस्त हुई है, उसके बाद वीकेंड तो होने ही वाला है, सुपर कूल सुपर फन। सो बस अभी से सेट करेंगे वीकेंड का मूड और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपका प्यार जो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, मुझ तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294। सो वेल फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ प्यारे गानों के साथ आपको हम एंटरटेन करने वाले हैं अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक। मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
1: Radio Musti।

0: Actu.
1: Radio Musty.
0: Des projets plein la tête? Avec la SICOM My Speedy Loan, prenez les devants pour faire de votre envie une réalité, telle que l'achat ou la rénovation de votre chez vous, de voyage ou le financement des études des enfants, ou encore de s'offrir une nouvelle voiture avec la SICOM. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre un prêt d'un maximum de 300 000 roupies sans garantie et donner un nouveau souffle à vos projets avec la SICOM My Speedy Loan. Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 200 384 70 ou visitez notre site web sicom.me.
2: Sicom Group, a lifetime commitment.
0: Sicom Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
3: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी. RM2
1: रेडियो मस्ती. RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुरी स्ट्रीट एंड औकात वेजनी, सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
0: RM2 Radio Musti।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. सबसे पहले स्थानीय खबरें. डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है. स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 900 से 1000 दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, जबकि सार्वजनिक जनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है. हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं. परिवहन के क्षेत्र में कार्बन की मात्रा कम करना और हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, इस ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए निजी ऑपरेटरों से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से गुजरने की मांग की जा रही है. एक इलेक्ट्रिक बस खरीदने के वास्ते 3.5 मिलियन रुपए तक की फाइनेंसिंग मुमकिन. बहुत जल्द UNDP और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित प्रमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के संदर्भ में ये सहायता राशि बढ़ाई जाएगी. सार्वजनिक सेक्टर को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संबंध पक्ष एक 2 दिवसीय सलाहकारी कार्यशाला के लिए एकत्र हो रहे हैं. मकसद है उन मुख्य सिद्धांतों पर आम सहमति बनाना जो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद देंगी. इस कार्यशाला की शुरुआत रिजवी में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में की गई. विदेशी समाचारों में भारत में दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हैं और दुनिया की नज़र भारत पर है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर

0: पुटिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति पुटिन की बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की भी पेजेस्कियान के से द्विपक्षीय बातचीत होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आए हैं। सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत मंडपम में होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। और 11 सितंबर 2001 की वो सुबह इतिहास की सबसे भयावह सुबहों में से दर्ज, जब अमेरिका के आसमान में उड़ रहे 4 विमानों को आतंकवादियों ने हथियार बना दिया था और कुछ ही घंटों में दुनिया की तस्वीर बदल गई। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और वाशिंगटन के पास पेंटागन को निशाना बनाया गया, जबकि 4th विमान पेंसिल्वानिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सुनियोजित आतंकी हमले में करीब 3,000 लोगों की जान चली गई और इसके बाद अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था, विदेशी नीति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का रुख बदल गया। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: ये शुक समाचार सुनिए। टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक में, टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहनलाल जगर, श्री मोहनलाल जगर जो मोहन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके घर टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा फ्लैक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे 4:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है।
4: बॉम्बे टॉकीज़,
5: रेडियो मस्ती,
6: रेडियो मस्ती।

0: सो वेल फ्रेंड्स, वार्म वेलकम 3:08 और ये है आपका बॉम्बे टॉकीज, जहां पर बी टाउन की खबरों के साथ वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, गाने नए पुराने लेकिन डिफरेंट अंदाज में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. सो मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: You're listening to Radio Masti.

और चलिए दोस्तों बात करेंगे मिर्जापुर द मूवी की बीना त्रिपाठी और फ्रसिका दुग्गल, जिन्होंने हाल ही में अपनी बातचीत में फिल्म के कलेक्शन और नुसरत फतेह अली खान के गाने सांसों की माला पे पर अपनी खुशी जताई है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मिर्जापुर फ्रेंचाइजी का किरदार बीना अपने हर पार्ट के साथ अलग अलग रूप में नजर आता है। इस किरदार को रशिका दुग्गल ने निभाया है और फिल्म में उनके ये फिल्म उनके करियर की पहली 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्म है। एक बातचीत में उन्होंने इस पर काफी कुछ कहा। फिल्म मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है और इस फिल्म में बीना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक बातचीत के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं कोई भी काम पूरा करने के बाद मुझे कभी भी उसके परिणाम को लेकर दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन इस बार मुझे उन फैंस के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हुआ जिन्होंने 8 साल तक वफादारी से हमारा साथ दिया और हमें इतना प्यार दिया। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो खुश हों, और सिर्फ वो नहीं और भी बहुत सारे लोग खुश हो जाएं, और सच में उन्हें काफ़ी खुशी है कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आगे अपनी बातचीत में रसिका दुग्गल ने कहा कि अगर मुझे किसी भी स्क्रीन पर

0: घर आने का मौका मिले तो मैं आभारी हूँ लेकिन हाँ थिएटर्स का अपना ही एक अलग माहौल होता है ऐसा लगता है जैसे इतने साल से जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे उसे अब इतने अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है फिल्म मेकर करण जौहर द्वारा फिल्म की तारीफ किए जाने पर बीना ने कहा कि अपने साथियों से सराहना मिलना जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है हमें बार बार याद दिलाता है कि उनकी खुशी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और ये एक बिल्कुल अलग तरह का एहसास है पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और अब मुझे लालच आ रहा है हर दो घंटे में मैं मैसेज नहीं आए तो मुझे अजीब सा लगता है और मैं अब ये जो हैप्पीनेस है उसे चखना चाहती हूँ और कहती हैं कि ये जो खून है अब मेरे मुँह लग गया है और मुझे बस इसका स्वाद चखना है ये हैप्पीनेस है रसिका दुग्गल की जहाँ पर मिर्ज़ापुर यस ये हम सब जानते हैं दैट ये रिलीज़ हुई थी कोविड के टाइम पर और OTT पर इसका काफ़ी क्रेज़ रहा मिर्ज़ापुर की बात कर रहे हैं हम मिर्ज़ापुर द सीरीज़ एंड अब आई है मिर्ज़ापुर द फिल्म जहाँ पर हर एक किरदार इतना फेमस हो चुका है कि इसे बड़े पर्दे पर देखना इसे बड़े पर्दे पर जीना एक अलग ही एहसास है सो अभी के लिए तो इस फिल्म का एक गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है सासों की माला एंड चलिए ऐसा ही कुछ एक गाना आपके लिए हम भी पेश कर रहे हैं एंड बी टाउन के लेटेस्ट अपडेट्स अब तक पहुँचा रहे हैं दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज मैं हूँ परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: सो वेल फ्रेंड्स, फ्राइडे है और टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड, टू गेट यू इन द वीकेंड मूड, कुछ ऐसे गाने जो अभी से लेकर दिन के चार बजे तक हम आपके लिए चला रहे हैं. लेटेस्ट ट्रैक्स, कुछ हार्ट टचिंग सॉन्ग्स, कुछ पेपी गाने, सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती, बिकॉज दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. परी का साथ दिन के चार बजे तक. फनाओ किसी का भाई किसी की जान, उसी फिल्म का ये गाना. एंजॉय दिस वन.

और चलिए दोस्तों, सोशल मीडिया और पैपराजी कल्चर ने सितारों और फैंस के बीच की खाई को थोड़ा सा कम किया है। फैंस को सितारों से जुड़ी हुई हर अपडेट मिलती है, मगर इसकी वजह से कई बार सेलेब्स परेशान भी होते हैं। और इस बदलाव को लेकर हाल ही में प्रीति जिंटा ने बात की है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का कहना है कि आज के दौर में एक्टर्स पर पहले के मुकाबले ज्यादा दबाव है। पैपराजी कल्चर के बढ़ने और सोशल मीडिया की दखल के चलते अब जो सेलेब्स है उन्हें कड़ी नजर का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें पहले कभी नहीं जूझना पड़ता था। और साल 2016 में शादी के बाद प्रीति जिंटा परिवार के साथ अमेरिका सेटल हो गई। इन दिनों वो कुणाल खेमू के साथ अपनी आने वाली स्पाई कॉमेडी फिल्म वाइब के प्रमोशन के लिए मुंबई में है। और एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि फिल्मों में वापसी करने पर उन्हें सबसे बड़ा कल्चरल शॉक क्या लगा, इस पर उनका कहना था कि अब एक्टिंग में फिल्म सेट के बाहर की चीजों को भी संभालना पड़ता है। साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक फिल्मों से नहीं बल्कि फिल्मों के आसपास की चीजों से जुड़ा है, जैसे पैपराजी और सोशल मीडिया का दखल। पहले हमें बस सेट पर जाकर एक्टिंग करनी होती थी, अब काम खत्म हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर आप कौन से कपड़े पहनते हैं ये जरूरी है। आपका एयरपोर्ट लुक मायने रखता है। अगर आप दुखी है तो आपको फैशनेबल तरीके से दुखी होना पड़ता है और आपको हैप्पी हर वक्त नजर आना पड़ता है। फैशनेबल तरीके से खुश दिखना होता है। और कहते हैं कि इमोशनली आप कोई भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, पैपराजी हमेशा आपको नोटिस करती है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अगर देश में कुछ भी हो रहा है तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उस पर कमेंट करना होगा, आपको सही बात कहनी चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब काम सिर्फ सेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि सेट के आसपास की चीजें भी मायने रखती है और हमेशा आपको शानदार दिखना होता है। यू ऑलवेज हैव टू लुक गुड। ये अब काफी बड़ा प्रेशर हो गया है, ये कहना है प्रीति जिंटा का। ये तो अब हम जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया एंड पैपराजीज ये जो है वो सेलेब्स के आसपास हमेशा घूमते रहते हैं, कई बार उनकी जो पर्सनल स्पेस है उसमें भी ये घुस जाते हैं और इसी की वजह से सेलेब्स थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन क्या करें भाई, कहते हैं ना कि हर एक चीज जो है वो एक प्राइस के साथ आती है। सब फेम की बात करें तो फेम भी कम्स विद अ प्राइस, और यहाँ पर सेलेब्स की बात करें तो आजकल उनके लिए कहते हैं कि फिल्मों के बाद भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मायने रखती है और फैंस के साथ जुड़े रहना ये भी एक दबाव है, ये कहना है प्रीति जिंटा का।

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: So well friends, the beautiful songs तो आप enjoy कर पाते हैं 24/7 on RM2 Radio Masti. अभी के लिए time हो चला है कि मैं परी लूँ आपसे अलविदा. लेकिन जाते जाते your messages, your dedications on 5499-1294. So आपको छोड़े जा रहे हैं with this beautiful track and Davisen Lalmati से हमारा साथ दे रहे हैं आप. So have a wonderful Friday, have a wonderful weekend. This beautiful गाना आपके नाम for all your loved ones. Well, Lalita जी पूछ रही हैं, hello परी, how are you? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ललिता जी, आप बताइए आप कैसी हैं. वैसे इस वक्त गर्मा गर्म कॉफी और अपना क्रिप बनाना एंजॉय कर रहे हैं. सो एंजॉय योर टी टाइम. साथ में याद कर रहे हैं सभी परिवार को, कुमारी, वीना, गीता, ज्ञानती, सरोज, संजय एंड विजय, सभी जीतन परिवार एंड कुमार दिव्यचंद ऑफ पेबे, आपके नाम भी एक स्वीट सा डेडिकेशन. सो बस साथ देने के लिए शुक्रिया. यहाँ पर मिस्टर रवि हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो थैंक यू सो मच, कनेक्टेड है आप रेडियो मस्ती के साथ. सो वॉर्म वेलकम एंड वेल वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक डेडिकेट करेंगे आपके लिए एंड विशिंग यू अ वंडरफुल फ्राइडे एंड अ वंडरफुल वीकेंड एज वेल. चलिए दोस्तों, यहाँ पर जाते जाते हमारे अपाडू परिवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. सो कहते हैं लेट्स रॉक, इट्स फ्राइडे. सो यहाँ पर दारिन, श्वेता, रवि, श्रीशा, लवशान, अपाडू परिवार साथ दे रहे हैं आप. सो एंजॉय योर फ्राइडे, एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मस्ती के साथ. एंड जाते जाते जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वी ऑल्सो हैव प्रीतम बेटू फ्रॉम पीटू हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप. सो गाना आपके नाम फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ वर्षा एंड फॉर ऑल योर फैमिली, ऑल योर फ्रेंड्स. चलिए यहाँ पर गानों को एंजॉय करने के लिए शुक्रिया. और कहते हैं दैट गाने तो प्यारे हैं और साथ निभा रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. सो वी हैव श्याम, राहुल, निश्चय, रानी, आनंद एंड एवरीवन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो थैंक यू एंड वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है गिनीशा लेकर योर फ्राइडे मैशअप, उनका साथ निभाइए. मुलाकात होगी आपसे कल अर्ली मॉर्निंग 8 से लेकर 11 बजे तक इन योर टाइमलेस तड़का. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ एंड एंजॉय योर फ्राइडे.

0: सच ब्यूटीफुल एंड लवली सॉन्ग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ऑन ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती. और फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम गाइस, इट्स ऑलरेडी 4 PM.
1: ऑन टू रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: The Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार रजनी के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. शुरुआत स्वास्थ्य संबंधी इन जानकारियों के साथ. डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है. स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 9 से 100 दवाइयाँ उपलब्ध नहीं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है. हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं. आज सुबह काउंटर्स के विक्टोरिया अस्पताल में जल संबंधी सप्लाई में परेशानियां हुई. अस्पताल में भंडारण समाप्त हुआ था और इसके चलते सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की जल टंकियों को भेजा गया. इसके अलावा दमकल कर्मियों की भी मदद ली गई. फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय आश्वस्त होना चाहता है किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवा प्रभावित नहीं हुई है. सेवाओं के लिए अलग जल भंडारण है. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार विक्टोरिया अस्पताल के स्तर पर पानी की कटौती नहीं है, क्योंकि ये अहम सेवाओं में समझा जाता है. इन पिछले कुछ दिनों में काफी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हमारे जलाशयों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं. CWA के महानिदेशक श्याम तानु के अनुसार माओबाकवा अभी भी 39% भरा है. उनका कहना है कि करीब 40% होने पर भंडारण का संचालन अच्छी तरह से किया जा सकता है, जबकि 20% से कम होने पर स्थिति चिंताजनक हो जाएगी. बता दें कि बारिश की स्थिति पर नजर है, जिसके बाद ही संभावित बदलाव स्ट्रेटेजी तय की जाएगी. कार्बन की मात्रा कम करना और हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, इस ट्रांजिशन में तेजी लाने के वास्ते निजी ऑपरेटरों से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से गुजरने की मांग की जा रही है. एक इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की फाइनेंसिंग मुमकिन. बहुत जल्द UNDP और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित प्रोमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के संदर्भ में ये सहायता राशि बढ़ाई जाएगी. विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं. भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

0: सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ साझेदार और आउटरीच आमंत्रित देशों के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान वैश्विक चुनौतियों, बहुपक्षीय सहयोग और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज नई दिल्ली पहुंचे, साथ ही अन्य नेता भी पहुंच रहे हैं। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup.
4: Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: तो रेडियो मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अभी इस समय हमारे साथ रजनी बिकर जी हैं। रजनी जी नमस्ते। अभी अभी आपने फ्लैश न्यूज सुना है। तो रजनी जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी आज से मॉरिशस में गोपियों का कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस टू मलेशिया श्री रविंद्र गंगू जी से। आप उनसे बात कर रहे हैं।
1: जी हाँ, नमस्कार। नर्मदा श्रोताओं को भी नमस्कार, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्र गंगू जी, आपको भी नमस्कार, स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी। तो खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुख्य कारण है और विशेष कारण भी है। हमारे यहाँ मॉरिशस में गोप्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और निर्धारित है 11 सितंबर से 13 सितंबर तक। तो
2: हाँ,
1: हर बार किसी विशेष विषय को चुनते हैं और मुख्य रूप से कहते हैं कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, व्यवसाय के बारे में बात की जाती है, एकेडमिक फोरम के बारे में और युवाओं के बारे में। और तो हमने के बतावा, अभी कौन विषय पर ही मुख्य रूप से ध्यान देवल जाता?
2: आलमा जही पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज उद्घाटन बा 7 संविधान आलवन जा मैलीजी से, और सिर्फ मलेशिया से नहीं, दूसरे देश से भी आलवन जा, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपीन और इंडिया से भी, भारत से भी, साउथ अफ्रीका से आलवन जा, में 7 खाली मलेशियन आलवन जा, और उनके सामने हम आने जाज। तो आज ओपनिंग सेरेमनी हुई, प्रेसिडेंस हुई, कल बा बिजनेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरा दिन मान लिया दिमाग के शनिवार को OIT हुई, बोले यूथ कॉन्फ्रेंस अब यहाँ पर ही। यही फिर आल वहां जब देखे कैसे मॉरिशस में कौन कौन सहायता मिली यहाँ पर बिजनेस करके, और यहाँ से कैसे अफ्रीक में जाए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कहानी बोलते हैं जब मॉरिशस यूज मॉरिशस एज ए गेट वे, एज ए पार्टनर टू गो टू अफ्रीका, मॉरिशस गेट वे टू अफ्रीका।
1: यानी कि यहाँ पर जोन जोन संभावना बा ओकरा जाने के कोशिश कर बस, और संभवतः ये प्रस्ताव भी रख बस कि यहाँ पर ही कौन चीज कर जा सकी, और यहाँ के लोग ये सब जोन देश लोग आल हवन सा प्रतिनिधि लोग आल हवन सा उन लोग के संगे भी संपर्क स्थापित कर जाए।
2: जी जी हाँ, हाँ, ये हाँ।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ही उम्मीद कर रहे थे, ऐसा आशा कर रहे थे ऐसा कि ये कॉन्फ्रेंस नीमन से चली, ढेर मना संपर्क मिली दोनों तरफ से, और ऐसने ये सम्मेलन हर बरी से ऐसने प्रगति करती रही। बहुत ही बहुत ही धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: RM2 रेडियो मस्ती

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musti, in the mix.
2: बिल्कुल जी, रेडियो मस्ती इन द मिक्स. हेलो रेडियो मस्ती फैमिली, इट्स फ्राइडे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. सो फ्राइडे आ गया है दोस्तों, वीकेंड का मूड ऑन हो गया है और अब टाइम है म्यूजिक को फुल वॉल्यूम पे ब्लास्ट करने का. सो विशिंग

0: डे सो फ्राइडे आ गया है दोस्तों, वीकेंड का मूड ऑन हो गया है और अब टाइम है म्यूजिक को फुल वॉल्यूम पे ब्लास्ट करने का. सो विशिंग ऑल मैशअप विद मी की निशा रात के 7 बजे तक. और ऑफ कोर्स फ्राइडे है, हम आ गए हैं तो गिफ्ट बनता है, यानी कि विल बी हैविंग टू लवली गिफ्ट्स टू गिव अवे टू यू माय डियर एंड लवली लिसनर्स. सो सिट ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड. फिलहाल के लिए चलिए जी गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन जो लेकर आए हैं स्पेशली टू ऑल अवर डियर एंड लवली लिसनर्स. Especially for you, RJ Parish is driving right now, so drive carefully. And for you, Deepu, my Deepshika, this one goes out to you, babes. Kushi Adaya.
1: On to Radio Masti.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: बिल्कुल जी, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन RM2 रेडियो मैसेज, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी चार बज के पैंतीस मिनट हो चुके हैं। इट्स योर फ्राइडे मैशअप। तो जो काम की जगह से निकल चुके हैं, ऑफिस से निकल चुके हैं, यू आर हेडिंग बैक होम। आई नो फ्राइडे में एक अलग सा ही मूड होता है ना। फ्राइडे की शाम है, वीकेंड का नाम है, और मूड होना चाहिए एकदम मस्ती और रेडियो मस्ती। सो आज ना कोई बोरिंग बात होगी, ना कोई स्लो वाइब्स, क्योंकि आ गया है वो शो जिसका इंतजार पूरे वीक को होता है, योर फ्राइडे मैशअप। सो बैक टू बैक हिट्स, क्रेजी बीट लेकर आते हैं, बॉलीवुड के धमाकेदार गानों को लेकर आते हैं, वो गाने जो आपको सीट से उठने पर मजबूर कर दें। और अगर बस में बैठे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आप हिलेंगे नहीं, झूमेंगे नहीं, तो आप बस हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू चेक इट आउट कि आज का लकी विनर कौन है। पूछा गया एक बहुत ही आसान सा सवाल थोड़ी देर पहले कि ये जो व्हाट डू वी कॉल इन इंग्लिश सियक, जो वर्ड फ्रेंच होता है ना सियक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। द राइट आंसर इज सर्कस। इतने सही जवाब हो, यस। जैसे हमने बोला था ना, ब्रेड एंड बटर वाले सवाल पूछेंगे जो इतने आसान है, जो सभी को हम मौका देते हैं टू पार्टिसिपेट, टू ट्राई योर लक ऑन दिस लवली फ्राइडे आफ्टरनून। सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया माई स्वीट हार्ट्स। लेकिन एज पर द रूल ऑफ द गेम, वी मस्ट हैव ओनली वन लकी विनर। और आज लकी ड्रॉ में किसका नाम निकल आया है, वो है प्रीति डर्सन फ्रॉम कॉफोको। कंग्रेचुलेशंस टू यू प्रीति डर्सन फ्रॉम कॉफोको।

Yes, the right answer is circus. So congratulations to you, my dear, my beautiful. Yes, you've just won tickets to Circus Zavata. Yes, get ready for this unforgettable experience filled with magic thrills, laughter and spectacular circus performances. आपके पूरे परिवार के लिए सो कैच सियाका ज़वाटा एट बगतल. उनके शोज होते हैं एवरी थर्सडे और फ्राइडे शाम के 6 बजे और सैटरडेज एंड संडेज जो होते हैं वो 2:30 बजे दिन के 2:30 PM एंड 5:30 PM. और बुकिंग्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आसान है, आप फोन कर सकते हैं ऑन 5250 9413 यानी कि 5250 9413 सियाक ज़वाटा. डोंट मिस द बिग मैजिक शो. सो देयर विल बी समवन कॉलिंग यू from the embassy to let you know how you can grab your tickets. So congratulations to you, my dear. और बाकी जो हमारे listeners हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी नहीं जीते तो क्या हो जाएगा? नहीं मेरी जान, आप जीत सकते हैं थोड़ी देर में. Just be our partner, our listener, RMT Radio Mercy. पर थोड़ी देर में we gonna kickstart another game.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Des projets plein la tête? Avec la SICOM My Speedy Loan, prenez les devants pour faire de votre envie une réalité, telle que l'achat ou la rénovation de votre chez vous, de voyage ou le financement des études des enfants, ou encore de s'offrir une nouvelle voiture avec la SICOM. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre un prêt d'un maximum de 300 000 roupies sans garantie et donner un nouveau souffle à vos projets avec la SICOM My Speedy Loan. Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 203 84 70 ou visitez notre site web sicom.me.
3: SICOM Group, a lifetime commitment.
2: SICOM Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
0: RM2
1: Radio Musty. It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musty in the mix.
4: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musty in the mix.
5: मुझे नहीं लगता है कि कभी मैंने आपकी स्वागत इतने प्यार से किया, इतने मुस्कुरा के बाहें फैला के कि भाई आ जाओ, स्पोर्ट्स न्यूज का टाइम हो गया है, आपका स्वागत है इन योर फ्राइडे मैशअप ऑन रेडियो मस्ती। क्या लेकर आई हो आज?
6: इतनी खुशी
5: क्या बोलूं? अरे आप ही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए।
6: नहीं, आज की बात कर लेते हैं।
5: नहीं नहीं, कल की भी बात कीजिए ना, सभी लोग इंतजार में बैठे। गिन्नी ने बोला था कल बात करेंगे, आपने बोला था हाँ जरूर करेंगे, तो करो ना। चार नहीं, आपको गिनती आती है? एक दो तीन चार, चार चार, मैं चार पे अटक गई, अटक गई चार पे। क्यों
6: क्यों, ये संडे वाला मैच जो आने वाला है उसका स्कोर
5: ना ना ना ना पांडे जी ना।
6: ऑलराइट, सो सुबह कहा था, तीन तीन बार कहा, अभी फिर से बोलना है?
5: बोल दीजिए, अच्छा लगता है सुनने में।
6: अच्छा है, जिनको नहीं सुनना है कान बंद कर लीजिए,
5: आंख भी बंद कर लीजिए,
6: बंद कर लीजिए। और जिनको सुनना है ध्यान से वॉल्यूम रेडियो
5: के जो वॉल्यूम है बढ़ा दीजिए।
6: बट वी शुड एडमिट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हजारों दिन मैंने गिना, इट्स बीन 1000 डेज नियरली, और शायद उससे थोड़ा ज्यादा, जब लास्ट टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में खेलते हुए देखा।
5: ऐसे भाई आपने कभी देखा है कि एक शेर जो है ना, जब वो पीछे अपने कदम पीछे हटा देते हैं तो क्यों क्यों हटाते हैं?
6: छलांग जिस तरह से मारे।
5: एग्जैक्टली, तो यही हुआ ना हमारे साथ।
6: कभी छलांग मारते हुए तो देखो क्लिफ में गिर जाते हैं।
5: नहीं नहीं, गिरेंगे नहीं इस बार तो पूरा, अगर हजार दिन लिए ना तो सब कुछ अच्छे से देख के ट्रेनिंग करके।
6: आज क्या है, यू नो एवरीवन टॉकिंग अबाउट इट, इट्स द टॉक ऑफ द टाउन कि यूनाइटेड की जीत हुई 4-0 से, वेरी गुड रिजल्ट, खासतौर पर सिस्को की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो आज मैंने एक दोस्त, ही इज अ बिग यूनाइटेड फैन है, और जब भी यूनाइटेड जीतता है सो वी ऐसे ही बात करते हैं, और अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड का शर्ट पहन के आता है वाइस वर्सा। तो आज आया ढूंढ रहा था, तो जैसे अरे मैंने सुना रेडियो में आपने क्या कहा, मैंने हाँ ओके, खुश हुए, हाँ बहुत खुश हुए। मैंने कहा कितना हुआ स्कोर? उसने कहा 4, तो यही तो बुला रेडियो पे। मैंने कहा हाँ, टीम कौन सी थी किस जिसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला?
5: उसको ये भी याद, जो लूजर्स होते हैं उनको याद करके क्या करेंगे?
6: उसकी टीम जीत गई थी यार, उसको ये भी पता नहीं था कि जिसको जिस टीम को 4-0 से मारा उस टीम का नाम है साबा।
5: चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं,
6: इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्र करो, अभी इतना फरफराना छलांग मारना अच्छी बात नहीं है।
5: जब इंसान जीते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है।
6: चलिए संडे को सिटी बजेगी तो हम देखेंगे, और आज की बात कर लें। आज चैंपियनशिप, वेस्ट हैम यूनाइटेड अगेंस्ट रेक्साम, फिर स्कॉटिश लीग कप में वी हैव गॉट स्टेनहाउस म्यू अगेंस्ट हार्ट्स, नेशनल लीग में भी आज मैच है, किडरमिंस्टर अगेंस्ट हार्टपूल। Then we move to Spain. Spain ke La Liga mein bhi Sevilla versus Valencia. Aur Germany ke Bundesliga mein Union Berlin Schalke 04, Venezia a Florentina. Aur France ke Ligue 1 mein Rennes Marseille. Agar Rennes Marseille wala match le to Marseille ki sthiti abhi 10th position pe hai. They have only 3 points jabki Rennes ke paas hai 7 ank, aur unki jeet hui hai, 2 match jeet paaye hai, 1 match draw. So abhi tak रैन की हार नहीं हुई है, जबकि मार्सेई केवल एक मैच जीता है और दो मैच हार गए हैं। सो ऑन पेपर

0: Again, Luke's favorite or Marseille का जो के जो latest performance रहे, it's been quite mi fig mi raisin. Italian Serie A में Venezia Fiorentina इनके बीच अगर देखें तो दोनों लगभग नीचे. Venezia 0 points, Fiorentina 0 points. अब इनमें से किसको ऊपर उठना है? Venezia Fiorentina दोनों के पास एक भी अंक नहीं है. And Germany के Bundesliga में Union Berlin आज खेल रहा है. Union Berlin against Schalke 04. So Schalke 04 is 14th position. उनके पास केवल एक अंक है. Am I right? हाँ, एक अंक. जबकि Union Berlin उसके पास भी एक अंक है. क्या बात है. आज दोनों Bundesliga और Italian Serie A में ऐसी टीमें जो जिनकी स्थिति काफी खराब है. Let's hope they win some points आज. कल के बारे में बता दें, कल भारी भरकम हुआ सैटरडे. कल स्टार्टिंग कल एक ही समय सभी मैच खेले जाएंगे एक्चुअली. तो एस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट 6 बजे मैच, बोर्नमुथ ब्रेंटफोर्ड सेम टाइम, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस इप्सविच, लिवरपूल फुलहाम, स्पर्स एवर्टन और संडरलैंड आर्सेनल. ये कल का लेट मैच होगा. और परसों संडे को बजेगी सिटी या मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने टॉप फॉर्म को बरकरार रखेगा, ये पता चलेगा जब ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने पड़ोसी मैनचेस्टर सिटी का स्वागत करेगा. यहां पर भी एक एनेक्डोट है. यू नो, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग और सिटी की टीम बहुत you know, they were very good winning titles, winning trophies and all. तो Manchester United वाले कह रहे थे, पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, भाई हैं, भाई हैं, Manchester हैं, Manchester हैं. तो मैं सोच रहा हूँ संडे को क्या कहेंगे, भाई हैं, पड़ोसी हैं.
1: पता है स्पोर्ट्स में ना कोई भाई होता है ना कोई पड़ोसी होता है. When you're on the ground,
0: कहते हैं ना कि कभी गधे को भी बाप कहना पड़ता है.
1: इट्स ओके व्हेन यू आर ट्राइंग टू विन समथिंग ना. अगर आप कोशिश करो, देखो जब आप एग्जाम्स देने जाते हो तो अगर आपके बगल में पड़ोसी बैठे हैं, कोई भी बैठे, आप अपने एग्जाम में कंसंट्रेट करते हो ना.
0: नहीं, अगर वो अच्छा लिख रहा हो तो नकल करते हैं. तो सैंडी कोवेंट्री और ब्राइटन वाला मैच भी होगा. एंड एंडिंग दिस होल वीक लीड्स यूनाइटेड न्यूकासल यूनाइटेड, ये होगा फॉर मंडे मैच. टेनिस में भी काफी कुछ हुआ. कैन यू इमेजिन, सुबह चार बजे US टाइम में मैच समाप्त हो रहे हैं और वी हैव गॉट द फाइनलिस्ट. सबालेंका ने पेगुला को हराया आज सुबह 7-5, 6-2. और आज ही रिबाकीना, हु इज गोइंग टू बी नंबर वन, उसने कोको गोफ को हराया. पहले सेट में होम फेवरेट कोको गोफ जीत पाई थी 6-3 से. फिर दूसरे सेट में रिबाकीना ने पासा पलटा 6-4, 6-4 और वो पहुंची फाइनल में. सो द फाइनल विल बी रिबाकीना अगेंस्ट सबालेंका, दैट इज द आउटगोइंग नंबर वन एंड डिफेंडिंग चैंपियन और द न्यू नंबर वन रिबाकीना. उधर लड़कों में मेंस सिंगल सेमीफाइनल आज रात, कल सुबह रिजल्ट आएंगे. इट विल बी बिटवीन वेरेव और कचानोव, जबकि दूसरा सेमीफाइनल होगा कल. ये होगा यूएस, दोनों यूएस के हैं, चियाफोए अगेंस्ट शेल्टन. तो इतना कुछ टेनिस. क्रिकेट में भी मेनी थिंग्स कमिंग अप, स्पेशली द फाइनल जो होने वाला है मॉरिशस में, ऑर्गेनाइज बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन, आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा. इसका फाइनल संडे को एंड द टीम विल बी देयर. 11 बजे से लेके हम लोग मैच के बारे में आप लोगों को बताएंगे एंड ऑल्सो काफी गिफ्ट्स भी होंगे. पर ही विल बी देयर आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए. सो द बिग फाइनल ये संडे के लिए 10 बजे बी दे. जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो मैच अभी खेला जा रहा है डे 3, पाकिस्तान ट्रेलिंग बाय 136 पहले इनिंग्स में, 133 अभी दूसरे इनिंग्स में, 184 for 3. सो दे आर फ्रस्ट्रेटिंग इंग्लैंड, इंग्लैंड की टीम जो 453 रन बना पाई थी. इधर आज वुमेन्स एशिया कप का एक दूसरा सेमीफाइनल, पाकिस्तान वीमेन अगेंस्ट श्रीलंका वीमेन. इंतजार कर रही है भारतीय टीम, जो जीतेगी यहां पर उसका मुकाबला होने वाला है अगेंस्ट इंडिया. सो देखेंगे चक दे. एंड डोंट फॉरगेट द क्रिकेट मैच जो मापू के SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में दिस संडे. और रीजनल लेवल पर हमें बताया गया
1: सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी ना.
0: हाँ, मैच 10 बजे. तो हमारी टीम विल बी लाइव फ्रॉम देयर 11 बजे से.
1: दैट्स गुड. एंड इट्स नॉट ओनली परी, इट्स अ बिग टीम कमिंग अप ब्रो.
0: अरे बाप,
1: चक दे पटे.
0: गुड गुड, वेरी गुड,
1: थैंक यू.
0: और Oshnoa mein bhi match hai this Sunday, that will be for the Oshnoa Sports Club. So

0: प्लेंटी ऑफ थिंग्स कमिंग अप. संडे के मैच के बाद मंडे को मैं जब आऊंगा यहाँ पर,
1: मैं भी आऊंगी मंडे को, तो मिलेंगे भाई.
0: ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट.
1: आपको भी ऑल द बेस्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट वीकेंड.
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
4: Friday Mashup. Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

फ्राइडे नाइट. यस सो व्हाट्स द प्लान? तो चलिए जी, प्लान को लेकर हम तो बहुत चीजें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. सो लेट्स किक स्टार्ट वन मोर गेम आपके और हमारे बीच में. जी हाँ दोस्तों, सो गेट रेडी मॉरिशस, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 इज हियर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन. जो अभी थोड़ी देर पहले मैं और अरविंद जी बात कर रहे थे, इट इज इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो और को स्पॉन्सर्ड बाय म्योप एंड फूड पार्टनर फॉर फाइनल्स जो है जेंट्स लिटिल इंडिया है. ट्रिलिंग सीजन किक ऑफ हो चुका है फ्रॉम 1st of August. उनके 6 पावर पैक टीम्स एंड नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू द बिग फिनाले बिटवीन कंटिनेंटल चीटास एंड कैंपस अब्रॉड लायंस. एंड दिस इज हैपनिंग ऑन संडे 13th ऑफ सेप्टेम्बर एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो है अथमापू. मैच स्टार्ट्स एट 10 AM. सो जॉइन अस लाइव एट द ग्राउंड फॉर द फुल डे हियर फुल ऑफ हाई एनर्जी क्रिकेट फन एंड एक्साइटमेंट. चीयर योर फेवरेट टीम, एंजॉय ग्रेट फूड एंड म्यूजिक.

Yes, it is a voucher offered to you, my dear, जहाँ पे आपको मिल सकता है 500 रुपीस का जो voucher है. हम पूछेंगे एक सवाल और आपको सही जवाब देना है on 5499-1294 पर. 5499-1294 पर आप बस participate कीजिए and send me the right answer. तो चलिए जी, मैं आपको याद दिला दूँ कि फिलहाल के लिए आपको मिल सकता है saffron grill का एक voucher worth 500 रुपीस. आपको बस मुझे बताना है कि इन फ्रॉम द मूवी है धुरंधर, यस धुरंधर, द मेन लीड एक्ट्रेस का नाम क्या था? यस, हु इज शी, जो रणवीर सिंह की बीवी का किरदार उन्होंने निभाया. आप मुझे बता दीजिए रणवीर सिंह की बीवी का नाम क्या था, द एक्ट्रेस उनका नाम क्या था इन द मूवी धुरंधर. 5499-1294 पर यू कैन सेंड मी द राइट आंसर राइट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी.

0: Just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: वेल गाइस, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 5:12 हो चुके हैं. यस, वेल हम तो कहेंगे इट्स अ फ्राइडे, और जब फ्राइडे आते हैं ना तो पता नहीं मैं इतना खुश क्यों हो जाती हूँ. आई डोंट नो अबाउट यू, मेरी तो जिंदगी जैसे खुशियों से भर जाती है क्योंकि आ जाते हैं वीकेंड. सो विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी फ्राइडे माय डियर. सो गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम. Hey, it's a Friday, and Friday का जब मूड आता है ना, ऑन होता है म्यूजिक का वॉल्यूम, अप हो जाता है और मस्ती तो नॉन स्टॉप चलती रहती है. सो बकल अप, टर्न इट अप, एंड लेट्स किक स्टार्ट द वीकेंड टुगेदर रेडियो मस्ती के फ्राइडे मैशअप के साथ, जहां फ्राइडे स्टार्ट्स और मस्ती नेवर स्टॉप्स. सो माय डियर लवली हियर लिसनर्स, आज बजेंगे वो गाने जो दिल को भी नचाने के लिए हम आपको तैयार करेंगे, ठीक है. सो साथ में आपको याद दिला दे, वी आर हैविंग अ लवली गेम हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर इंटरव्यू रेडियो मस्ती, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ आप अभी खुश रहें हमेशा और स्माइल करते रहें. तभी तो इतने सारे कैडोज लेकर आते हैं. जहाँ रोज हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल कि मूवी धुरंधर में द मेन लीड एक्ट्रेस अपोजिट रणवीर सिंह, जिन्होंने उनकी बीवी का किरदार निभाया था, उसका नाम क्या है. हर नेम इज सारा अर्जुन, दैट्स द राइट आंसर. और जी हाँ दोस्तों, लकी ड्रो में बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया है. सो लकी ड्रो में आज का जो लकी विनर है हमारा, वो है हमारी लवीना सुखदेव ऑफ कैथोबोन. कंग्रेचुलेशंस टू यू.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: RM2 Radio Musti.
1: परदेसिया ये सच है पिया।

0: गुड गुड म्यूजिक लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती 5:40 हो चुके हैं बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं फ्राइडे मैशअप विद मी आरजे गणेश ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती ऑन 5499124 पर आई गॉट योर डेडिकेशंस तो चलिए साथ में वी गना चेक इट आउट लेकिन आपको याद दिला दे कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे मैशअप में ऐसे गाने तराने हम लेकर आते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप वीकेंड मूड में आ ही जाए तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अगर घर पे हो स्पीकर्स रेडी रखो और अगर फ्रेंड्स के साथ हो बस फिर क्या बात है पार्टी तो यहीं शुरू हो जाती है आपके और हमारे बीच में और आप सुन रही हैं रेडियो मस्ती सो माय डियर लवली लिसनर्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून ऑन द नेक्स्ट वन जो है हम लेकर आए हैं स्पेशली फॉर यू माय डियर यानी कि आप वो हमारी प्यारी मालिनी जी प्रणाम आपको भी मेरी मीठी मीठी गिनी आए हाय डायबिटीज ना हो जाए आई होप दैट यू डूइंग गुड बिल्कुल ठीक है सिलेक्शन एकदम सुपर्ब है एज यूजुअल फ्राइडे की जो मस्ती शुरू हो चुकी है गर्मा गर्म कॉफी के साथ और ऐसे ठंडी ठंडी मौसम में कॉफी पीना कितना अच्छा लगता है ना सो कीप ऑन एंजॉयिंग The next one goes out to you, Malini. And I just want to dedicate the next one. Kisine likha hai, let's rock with Rockstar Kini. That's for Darren. Shweta, Ravish, Prishala, Vishana, Padu families from Roshnoor. Thank you so much. And driver Asgar ke liye, the next one goes out to you. And as well, conductor, hamare pyare bachchan ke liye. And to all our dear and lovely listeners, jo saath de rahe hain, bus mein baithe ho. गाड़ी में बैठे हो अगर फिलहाल के लिए आप मेट्रो में बैठे हो और हमारा साथ दे रहे हो तो हियर वी गो दिस वन गोज आउट टू यू
1: आर टी रेडियो मस्ती

0: listening to Radio Masti. एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
1: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. 5 minutes.

0: 48 मिनट्स हो चुके हैं और रेडियो मस्ती लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फैशन टिप्स। बिल्कुल जी, ठंड का मौसम बहुत बढ़ गया है और आपको तो पता है कि गणेश चतुर्थी के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लेडीज एंड इवन जेंट्स तैयारी ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल गणेश चतुर्थी की नाइट और विंटर वेदर के लिए फेस्टिव भी और वार्म भी लुक रख सकते हो आप। सो मेंस जो है कुर्ता प्लस स्ट्रेट पैंट्स के ऊपर नेहरू जैकेट आप पहन सकते हो, कलर्स क्रीम या मरून, बॉटल ग्रीन, बेज या नेवी, मस्टर्ड भी, नीचे लूफर्स या जूटीज भी पहन सकते हो आप। और वुमेन्स जो सिल्क चंदरी साड़ी जो होता है या फेस्टिव कुर्ता सेट जो होता है ना, साथ में शॉल, स्टोल, विंटर के लिए वेलवेट वुल ब्लेंड सोल काफी एलिगेंट लगेगा। आपके शॉल जो है काफी अगर ब्लिंग है तो चलेगा। इंडो वेस्टर्न के लिए तो कुर्ता विथ टेलर ट्राउजर्स, लॉन्ग एथनिक जैकेट, नाइट फंक्शन के लिए स्पेशली क्लासी, और विंटर हैक नॉर्मल स्वेटर को आउटफिट के ऊपर डायरेक्टली मत डालो। स्ट्रक्चर्ड शॉल जो है, एथनिक जैकेट, केप या लॉन्ग कोट, उसे करो यूज ताकि फेस्टिव वाइब मेंटेन रहे। और एक्सेसरीज गोल्ड टोन ज्वेलरी, स्टेटमेंट ईयर रिंग्स, वॉच जो मौजूदीज होते हैं, जुटीज होते हैं और गणेश चतुर्थी के लिए जो ट्रेडिशनल टच बेस्ट रहेगा। और नाइट कलर्स हमेशा डार्क रहना चाहिए, जैसे कि डीप ग्रीन, वाइन नेवी, रस्ट चॉकलेट, ब्राउन एंड इवन आइवरी, विंटर लाइटिंग जो है उसमें बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बस हमारे ये जो फैशन टिप्स आप उसको फॉलो करते रहें एंड कीप ऑन लुकिंग गुड फॉर योर गणेश चतुर्थी।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती एंड दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी. सात समुंदर पार से भी बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं. द गुड म्यूजिक सिलेक्शन ऑलवेज आप लोगों के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. फॉर नाउ जस्ट चेक योर टाइम, इट्स 6 पीएम एंड द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती आफ्टर द 6 बजे के समाचारों के बाद.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

0: 11 सितंबर 2026
1: सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुर्खियां इस प्रकार है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं, हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद। दवाओं की कमी के क्या कारण है और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध, इसके बारे में जानेंगे। देश में कम कार्बन उत्सर्जन और सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें, ऐसा बदलाव तेजी से लाने के लिए निजी ऑपरेटरों को बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत एक इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गणेश चतुर्थी पर्व के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं और श्रद्धालु बप्पा को अपने घर लाने की तैयारियां कर रही हैं। लोगों को पर्यावरण प्रिय मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मोक्ष सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कार्यशाला का आयोजन किया। विदेशी समाचारों में 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमले किए गए थे, 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 50 साल बाद आज भी इसकी दर्दनाक यादें दुनिया भर में लोगों की जहन में जिंदा। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज के इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 9 से 100 दवाइयां उपलब्ध नहीं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। परिवहन की बात करते हैं, देश में कम कार्बन उत्सर्जन और सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें, ऐसा बदलाव तेजी से लाने के लिए निजी ऑपरेटरों को बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत एक इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के समर्थन से प्रोमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के अंतर्गत ये वित्तीय सहायता जल्द ही बढ़ाए जाने का भी विचार है। दैविक राजकुमार, करुणा लालू।
2: 116 सार्वजनिक और निजी इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल हमारी सड़कों पर चलती हैं। ये संख्या प्रमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के निर्धारित लक्ष्य से काफी ज्यादा है। निजी बस ऑपरेटरों से इसी दिशा में ज्यादा निवेश करने की मांग की गई है। मंत्री उस्मान महमूद कहते हैं, बजट में सरकार ने बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए वृद्धि दी है। ये सरकारी फंड बस मालिकों को अपनी बसें बदलने के लिए सहायता करता है। यदि इलेक्ट्रिक बस लेंगे तो 30% दिए जाएंगे, यानी कि अधिकाधिक 3.5 मिलियन रुपए, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है।

0: यूएनडीपी 3.75 मिलियन डॉलर उपलब्ध करा रहा है, जिससे इस सब्सिडी को बढ़ाया जा सके। यदि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे अपने फोटोवोल्टाइक पैनल के साथ, तो अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। इस पर काम हो रहा है, ये 100% पर्यावरण प्रिय होगा। सार्वजनिक और निजी परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने से मॉरिशस को कई फायदे होंगे।
1: दिस इनिशिएटिव इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सेवरल
0: यूएनडीपी की आलका भाटिया कहती हैं, इस पहल से मॉरिशस में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में गति आएगी और स्वच्छ ऊर्जा से चार्जिंग करने के ढांचे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता की हवा है और बस मालिकों तथा यात्रियों के लिए भी बेहतर अनुभव होगा। इस सेक्टर के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है।
2: The bus services bill point game changer.
0: भूमि परिवहन मंत्री कहते हैं, बस सर्विसेज बिल एक गेम चेंजर होगा। मॉरिशस जैसा देश जो प्रति साल बस उद्योग के लिए 4 बिलियन रुपए खर्च करता है और जो प्रतिदिन 4,50,000 यात्रा के लिए जिम्मेदार हैं और जिसके 22,000 बसें हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं था, ये स्वाभाविक नहीं। जहां तक सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने का सवाल है, ये परियोजना 2028 में पूरी होगी। इस वास्ते 5.6 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 262 मिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं।
3: बंदरगाह में जहाज़ों के लिए सेवाएं बेहतर करने की दिशा में आधुनिकीकरण की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन के लिए मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी ने मैरिटाइम सिंगल विंडो नामक एक नया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बंदरगाह के विभिन्न सेवाएं एक साथ लाएगा। इस प्रणाली से बंदरगाह को समुद्री यातायात में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को बेहतर ढंग से संभालने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। दासा परसोमी की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। 4,200 जहाज, 7,80,000 कंटेनर और 1.3 लीटर ईंधन। 2025 के जुलाई महीने और 2026 के जून महीने के बीच बंदरगाह में ये गतिविधियां दर्ज।
4: MSC Alina पोर्ट कंट्रोल चैनल 14।
3: 3 वर्षों से मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी इस डिजिटल प्रणाली VCS का सहारा ले रहा है ताकि बंदरगाह प्रक्रियाओं में काफी समय बच जाए। ईमेल्स का इस्तेमाल समाप्त, जहाजों का आना जाना डिजिटल तरीके से संचालित। बहुत जल्द सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और ये बनेगा मैरिटाइम सिंगल विंडो, एक ऐसा मंच जो MPA की अन्य सेवाओं में एकीकृत हो जाएगा। मॉरिशस पोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट पोर्ट मास्टर कैप्टन इमरान महमूद दौलत ने कहा, एक मैनेजमेंट पार्किंग स्लॉट होगा हर एक जहाज के लिए। मैरिटाइम सिंगल विंडो में वेसल क्लियरेंस सिस्टम भी शामिल, सामानों को उतारने, मैले तेल निकालने, कचरों को भी हटाने में आसानी होगी। कभी कभी फायर कवरेज की मांग भी की जाती है, ईंधन लेना पड़ता है, रख रखाव के काम भी करने होते
4: हैं।
3: ये डिजिटलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन की जरूरतों को भी पूरा करता है। 2024 के जनवरी महीने से सदस्य राष्ट्रों को मैरिटाइम सिंगल विंडो का प्रयोग करना चाहिए। इससे जहाजों से जुड़ी जानकारियों का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आदान प्रदान किया जा सकेगा और विकेंद्रित भी किया जा सकेगा। पोर्ट ऑपरेशंस एंड कंसेशन की निदेशिका अनुमिता सिबालक ने कहा, यहाँ पर बहुत चीजें जमा करते हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स और बिलिंग पर भी। इस डिजिटल सिस्टम से एक ही बार एंट्री करते हैं और बाकी अपने कंप्यूटर पर सीधा प्राप्त हो जाता है। इससे समय बच जाता है, संसाधनों की भी बचत होती है, कार्यों में भी तीव्रता आती है, मौजूदा संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, चाहे ह्यूमन हो या कैपिटल संसाधन हो, ग्राहक भी संतुष्ट होंगे। पोर्ट्स में ट्रांजिट पर अतिरिक्त जहाज़ों के आने की उम्मीद है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के चलते। ऐसी स्थिति से बंदरगाह सिस्टम का महत्व बढ़ जाता है। 2027 के अंत तक धीरे धीरे इसे कायम किया जाएगा। इससे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। इन

0: दवाओं की कमी के क्या कारण हैं और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध हैं, इस पर सहा ओनो की रिपोर्ट पेश है विवरण याचना मिश्रा।
1: रोज रोज की दवाइयां ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। निजी फार्मेसीज में कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी मांग ज्यादा है लेकिन जो मिल ही नहीं रही। ऐसी स्थिति जो अब फार्मासिस्ट के लिए आम सी हो गई है।
2: Qu'ils soient un problème de la peau, qu'ils soient un problème diabétique, qu'ils soient un problème de tension, beaucoup moins de produits n'y manquent parce qu'on peut constater ces derniers temps ni souvent.
1: त्वचा, मधुमेह या रक्तचाप की दवाई की कमी है। दवाई जैसे ही मिलती है खत्म हो जाती है। लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है। साल की शुरुआत से ये समस्या हो रही है और स्थिति सुधर ही नहीं रही। मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र में 90 से 100 दवाइयां उपलब्ध नहीं और कारण है विदेशी सप्लाईज में कठिनाई। सप्लायरों और उत्पादकों के पास दवाई की पैदावार के लिए इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यूक्रेन युद्ध आदि के कारण सप्लाई चेन प्रभावित है और यूक्रेन, चीन जैसे देश ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। इन्हें बनाने में ही देरी हो रही है।
3: Et peut-être personne n'a pas réalisé qu'Ukraine, la Chine, l'Inde, c'est un gros producteur de matières premières. Nous trouvons-nous dans une période que ce produit-là n'est pas produit à temps.
1: इसका संबंध सार्वजनिक क्षेत्र से भी है, जहां करीब 50 दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हैं सप्लाई प्रणाली में बाधाओं के कारण। मंत्रालय आश्वस्त करता है ब्रांड्स की कमी का ये अर्थ नहीं कि इलाज नहीं हो पाएगा। इनकी जगह पर अन्य दवाइयां भी उपलब्ध हैं।
3: Sa confiance qui vous gagnez avec un produit là, vous pensez c'est ça qui peut soigner.
1: जब किसी दवाई से कोई ठीक होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि यही ब्रांड सही है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि दवाई का मॉलिक्यूल जरूरी है न कि ब्रांड। डॉक्टर को भी मरीजों को आश्वासन देना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट हैं। ब्रांड बदल भी जाए तो भी दवाई में वही मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं।
3: Et nous bien capable de donner confiance à sa patient là qui malgré pendant combien de mois te pas peut te prendre ça là te stabiliser le tlala ce nom différent mais il contenait un même produit.
1: अधिकारी मरीजों से मांग कर रहे हैं कि दवाई की कमी के कारण अपना इलाज न रोकें, इसके बदले डॉक्टर की सलाह लेकर सब्स्टिट्यूट यानी अन्य विकल्पों के साथ इलाज जारी रखें।
0: मॉरिशस में हर दिन कुल मिलाकर करीब 5 लाख डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। वित्तीय सेक्टर से जुड़ी ऐसी गतिविधियां आजकल हम बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस एक इलाकाई टेक्नोलॉजी हब बनने की राह पर है। पेमेंट सॉल्यूशंस में माहिर हाईटेक पेमेंट सिस्टम्स नामक कंपनी ने 8 सितंबर को फ्रिकॉफ्लाक में इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। सिल्वाना परिमामन, याचना मिश्रा।
1: दुकानों में QR कोड स्कैन करना, सुपरमार्केट में कार्ड से पेमेंट करना, अपना वेतन सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त करना, पिछले कुछ सालों से डिजिटल टेक्निक मॉरिशनों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है और आज इसका महत्व और बढ़ रहा है। मॉरिशस में हर दिन 5 लाख डिजिटल पेमेंट्स किए जाते हैं। आज दुनिया में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में औसतन हर साल 140 से 150 मिलियन डॉलर का कारोबार होता है। सभी क्षेत्र इससे जुड़े हैं, जहां नकद को डिजिटल रूप दिया जाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है, वहां हम समाधान ला सकते हैं। ये कार्यशाला मोरक्को की हाईटेक पेमेंट सिस्टम्स कंपनी द्वारा आयोजित की गई। कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल पेमेंट के बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है।
4: मॉरिस a prouvé sa capacité à devenir un hub financier dans la région.
1: भुगतान उद्योग वित्तीय उद्योग का हिस्सा है। मेरा मानना है कि अगला कदम एक तकनीकी हब होना चाहिए। दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा 15-17% है, अफ्रीका में 5-6%। इस क्षेत्र में अभी काफी विकास की गुंजाइश है और ये विकास मॉरिशस से शुरू किया जा सकता है। पेमेंट उद्योग अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलावों

0: में से एक में से गुजर रहा है। दुनिया के साथ साथ मॉरिशस में भी रियल टाइम पेमेंट एक आदत बन गई है। मास्टर कार्ड कंपनी के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल टेक्निक को अपनाने और वित्तीय समावेशन के कारण अफ्रीका में डिजिटल पेमेंट का बाजार 2030 तक $1.5 trillion तक पहुंच सकता है।
1: गणेश चतुर्थी पर्व से पहले बेलेगवेसश के पुष्पलोचनाया मंदिर में 150 बच्चों और युवाओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाई। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन और आर्ट्स इंस्पायर के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ना है, साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मिट्टी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना भी है। पूजा अर्चना के लिए इन प्रतिमाओं को घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद इनका विसर्जन किया जाएगा। रिपोर्ट आस्था गोविंद तमन के साथ।
2: मिट्टी का एक गोला, सृजन में तल्लीन नन्हे हाथ और कल्पनाओं की उड़ान धीरे धीरे एक आकृति आकार लेती है और सामने आता है भगवान गणेश का सौम्य स्वरूप। पुष्पलोचन मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में 150 बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाने की विभिन्न विधियां सीखी। साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी कल्पना के अनुसार अपनी मूर्ति को एक विशेष रूप और भाव प्रदान किया।
3: भैया ने क्या बनाया है?
4: मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाया, मैं इसकी पूजा करना चाहती हूँ। गणपति पप्पा मोरिया।
5: हम यहाँ पे माटी से मूर्ति बना रहे हैं गणेश जी के, जो नदियों में पोल्यूशन नहीं करता और मछलियों को नहीं मारता है और अच्छे से नदी में घूल जाता है।
3: तो आपने क्या बनाया, हमें बताइए अपने डिजाइन के बारे में।
5: यहाँ पे हमने बाल गणेश बनाए, इनके हाथ पैर और मोदक हमें बनाना सिखाया गया है। हमारे लिए हमारे गणेश जी एक दोस्त है और वो हमारे सारे दुख खत्म कर देते हैं। चतुर्थी के दिन हम इसको समंदर में या फिर नदियों में इसका विसर्जन करा देंगे।
6: मूर्ति बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, जब मन लगा कर करते हैं तो बहुत अच्छा और आसान दिखता है। मैंने एक गणेश मूर्ति बनाई है और उसके साथ मैंने मोदक और लड्डू उसके बाजू बीच लगाए, क्योंकि गणेश भगवान को माना जाता है कि उसे बहुत मिठाइयाँ बहुत पसंद है।
2: किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। वे बुद्धि, विवेक और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी का चयन करना पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। ये प्राकृतिक सामग्री विसर्जन के समय सरलता से जल में विलीन हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।
7: सब टेक्निक बता रहे हैं कैसे मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ कैसे काम करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं था, बच्चे लोग अब समझ गए कैसे करने के लिए। और हम बदला रहे हैं जो आर्ट्स इंस्पायर का जो टीम है यहाँ पर।
8: हमारा जो लक्ष्य है फेडरेशन का, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो हमारे मंदिर की ओर आए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है फिर से उन लोगों का रुचि फिर से भरे।
2: कार्यशाला के दौरान माता पिता भी बच्चों का उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। कहीं वे उनके कार्य को निहार रहे थे तो कहीं मूर्ति को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन कर रही थी।
9: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ और हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि हमारी संस्कृति क्या है।
10: आज बच्चों ने सभी बच्चों ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। इससे देख कर लगता है कि बच्चों में एक कल जो उनके अंदर जो एक कला है उनको उभारने का एक अच्छा अवसर दिया गया है बच्चों को। बच्चों का जो ध्यान आजकल जो भटक रहा है, आज अच्छे काम में लगाया जा रहा है उनका ध्यान, जिससे उनकी कला और भी निखर कर सामने आएगी। इसके
2: मूर्ति निर्माण से लेकर विसर्जन तक इन बच्चों और युवाओं ने इस परंपरा को केवल जाना ही नहीं बल्कि अपने हाथों से गढ़कर उसे आत्मसात भी किया।
1: गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल के लिए कुछ खास यादें ताज़ा हुई। उन्होंने अपने बचपन के स्कूलों का दौरा किया जहां कुछ स्थल शशि सागर राम गुलाम की स्मृतियों को समर्पित हैं। इस महीने मनाई जाने

0: वाले राष्ट्रपिता की जयंती के संदर्भ में ये गतिविधि आयोजित की गई। मकसद रहा उनके विचार और मूल्यों को नई पीढ़ियों तक बढ़ाना। शशि सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के संदर्भ में आज रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जोन वन के छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रपिता से जुड़े इतिहास और विरासत पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। 25 साल हो गए हैं 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क वासियों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रूप से हुई थी। लोग हमेशा की तरह कामकाज में लगे थे जब सुबह 8:46 पर सब कुछ अचानक बदल गया। अदिति अवतार की ये रिपोर्ट पेश है।
1: कुछ ही मिनटों में ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश कर गई। मात्र 17 मिनट बाद ही एक दूसरा विमान साउथ टावर से जा टकराई। मिनटों में ये बात स्पष्ट हो गई अमेरिका पर आतंकी हमले हुए हैं। आतंकवादी गुट अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 व्यापारिक उड़ानें हाईजैक की थी। अमेरिकन एयरलाइंस का एक तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी के पास पेंटागन में गिराया गया, जबकि दूसरे हमलों के बारे में सूचित होने के बाद एक चौथे विमान के क्रू सदस्य और यात्री आतंकवादियों से भिड़े और विमान पेंसिल्वेनिया में एक खाली इलाके में क्रैश कर गया। 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर ढह गया और उससे 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी ध्वस्त हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें धूल और मलबों में तब्दील हो गईं। हताहत मची और हजारों लोग फंस गए। मारे गए लोगों में मुख्य रूप से ऑफिस के कर्मचारी, यात्री, दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और अन्य फर्स्ट एडर शामिल रहे। 9/11 के इन हमलों में कुल 2,977 लोग मारे गए। इनमें 90 देशों के नागरिक शामिल रहे, जिससे दुनिया भर में शोक की लहर चली। इस विनाश के बीच कुछ असाधारण साहस के दृश्य सामने आए। बचाव कर्मी बिना अपनी जान की परवाह किए घटनास्थल पर लोगों को बचाने में डटे रहे। कई महीनों तक मलबे हटाने और लोगों को निकालने का काम जारी रहा। हालांकि बीतते समय के साथ जीवितों की संख्या घटती गई। सितंबर 11 की तारीख ने दुनिया में वैश्विक राजनीति को एक नया आयाम दिया। सभी देश आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करते दिखे। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू की, जब तालिबान ने अलकायदा के अधिकारियों को अमेरिका के हवाले करने से इनकार किया। 25 साल बाद सिर्फ समय बीता है। इस दर्दनाक हादसे की पीड़ा और उसकी यादें आज भी लोगों की जहन में जिंदा हैं। 11 सितंबर को न सिर्फ उस भीषण हमले के लिए याद किया जाता है, बल्कि ये मौका है कई लोगों के साहस को नमन करने का। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल डाला।
0: 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन लग रहा है। कई अफ्रीकी राष्ट्र नेता, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खास बैठकें निर्धारित हैं।

0: मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
1: पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी दक्षिणी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद भी ऊंचे इलाकों पर मौसम बरसाती रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 13 से 16, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 20 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:09 पर, शाम को सूर्यास्त 6

0: बजकर 3 मिनट पर होगा।
1: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगी फैजन को। कुछ ही समय में शोक समाचार। रागुलेन बॉम्बू में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती गीता काली पैदाशी नाम गुरुदयाल, जो मंदिरा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रागुलेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM, क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। कोमलन रोड न्यूवेल फ्रांस में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोसिल जोगी, जो सोबाउद्दीन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर कोमलन रोड न्यूवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रामधानी लेन पोंफाले में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड के श्री जसबीर रामधानी, जो गासो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पिता श्री लोल रामधानी के घर रामधानी लेन पोंफाले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। अवेनी डिपिने कैटरबोर्ड में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हेमवती खेदन पैदाशीना रामपासाद, जो सोना नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री राज खेदन के घर अवेनी डिपिने कैटरबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगाद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। टैगोर रोड घोंगुब में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भानुमती भगवत पैदाशी नाम खानदर सिंह, जो भानुमती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर भगवत टैगोर रोड घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिल हमदर्दी है।
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup. Get down. Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

Good evening, जी नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम. वेलकम बैक इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर फ्राइडे मैशअप. थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए एंड बस यूं ही साथ देते रहना. वी हैव सम गुड गुड म्यूजिक, हम आपका साथ देते रहेंगे. तो चलिए जी टू ऑल दोस्त जो घर पहुंच चुके हैं, ये गाना आपके नाम है. एंड इफ यू आर स्टिल ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: बिल्कुल जी, 6:45 मिनट हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। टू ऑल दोस जो किचन में खाना बना रहे हैं, हेलो जी, कुहाश टू यू माय डियर। आई नो फ्राइडे का टाइम है, जस्ट टेक इट इजी पीजी, और जैसे अपने आपको थकाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कुक समथिंग वेरी इजी एंड गेट सम रेस्ट माय डियर, यू बैडली नीड दैट। एंड टू ऑल दोस हु आर स्टिल ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना। कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। एंड टू ऑल दोस जो साथ दे रहे हैं, स्टिल एट वर्क जस्ट लाइक मी, कुहाश टू यू माय डियर। तो चलिए, घर पहुंचने ही वाले हैं आप जो ड्राइव कर रहे हैं, ये गाना आपके नाम।
0: RM2 Radio Musti.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: बात है, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। भाई चलिए दीवानगी की हद तक अगर आप इजहार इकरार कर ही रहे हैं तो चलिए मान ही लेते हैं। और वैसे प्यार में जो स्टेटमेंट लोग करते हैं ना, जो वादे करते हैं, उसमें सब लोग आंख बंद करके भरोसा कर ही लेते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी होती है टू रेस्टोर फेथ इन द लव जो आप दिखाते हैं। तो चलिए हम तो बिल्कुल फेथ रेस्टोर करने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि देखिए कल हमने वादा किया था जाते जाते कि हम मिलेंगे फॉर यू फ्राइडे इवनिंग एक अलग ही मूड के साथ। तो चलिए जी, मंडे टू थर्सडे हम स्लो गाने, रोमांटिक गाने लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और आज का मूड तो अलग ही है, जहां पर यू गना फील द फ्राइडे वाइब टुगेदर, क्योंकि इस इवनिंग को सब लोग बहुत ही प्यार से रात देखते हैं। एंड आई नो कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, और मंडे टू थर्सडे काम करते करते जब फ्राइडे आता है तो सुबह सवेरे लोग राहत की सांस लेते हैं, नोइंग दैट कि भाई देखो फाइनली वीकेंड आ ही गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। और चलिए दिव्या का साथ है योर फिल्मी जाम अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक नॉन स्टॉप, ऐसे ही ब्यूटीफुल नॉन स्टॉप गाने आप लोगों के लिए, धमाकेदार गाने टू गेट यू इन द गुड मूड। और साथ में आपके मैसेजेस डेडिकेशंस जो होने वाला है ऑन 5499-1294, लेट मी नो कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड, आप किस तरीके से अपने इस फ्राइडे इवनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के शायद मूवी देखने का प्लान है, अनएक्सपेक्टेडली आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लान बन जाता है और आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मूवी देखने चले जाते हैं, या फिर ऐसे ही आप नए नए लवर बने हैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके हैं, तो ज़रूर हमें याद करिएगा ऑन 5499-1294।
1: Filmy Jam.
2: RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती
0: DJ play that song, of course. यहाँ पर आरजे तो जरूर आप लोगों के लिए नॉन स्टॉप गाने ऐसे ही चलाती रहेंगी टिल 9 PM 7:21 हो चुके हैं. चले बढ़ते हैं आपके कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर. प्लीज डेडिकेट नेक्स्ट गाना फॉर माई हस्बैंड विशाल ऑफ बोलो. ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 50th बर्थडे टुडे एंड उनको बहुत बहुत सारा प्यार फ्रॉम वाइफ नीमा और आपकी बेटी है. अनलकीली आपका मैसेज यहाँ पर थोड़ा इनकम्प्लीट आया है. अगर आप अपने मैसेजेस फिर से भेजना चाहते हैं तो आप हमें याद कर सकते हैं ऑन 5499-1294 व्हाट्सएप पर. अगर आप हमें याद करेंगे तो वहाँ पर कोई इशू नहीं होगा. हाय प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर माय मॉम सुरेखा एंड नानी लीलावती फॉर फ्रॉम लवली डॉटर वर्षा. हे वर्षा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर किसने हमें कहा है हेलो रेडियो मस्ती टीम गुड इवनिंग वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर माय कलीग्स एंड फॉर ऑल माय फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम साहिल. थैंक यू सो मच. और यहां पर किसी ने हमें कहा है हाय नीतू नहीं बल्कि दिव्या सादर ही है. थैंक यू सो मच दीपक जी हमारा साथ देने के लिए. एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोस जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ.
1: Filmy Jam. RMG Radio Musti.

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
2: हाय, क्या बात है? व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग मच, बस आपको हम एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। एंड चलिए, यहाँ पर आपका मैसेज एक बार फिर से आ गया है फॉर मिस्टर विशाल ऑफ बोलो। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अगर पॉसिबल हुआ आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, क्योंकि नॉर्मल मैसेजेस में ना कभी कभी आपके मैसेजेस इनकम्प्लीट हो जाते हैं और इसमें टेक्निकल इशू आ जाता है। तो अगर आप व्हाट्सएप पर आपके मैसेजेस भेजेंगे उधर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर 7:35 हो चुके हैं, दिव्या का साथ इन योर फिल्मी जैम। वक्त तेज रफ्तार से बढ़ ही रहा है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये फ्राइडे इवनिंग रुकने से भी रुकने वाला नहीं है। जिस रफ्तार से हमारे गाने ने स्पीड पकड़ लिया है, उसी स्पीड के साथ ये फ्राइडे ऐसे ही निकलता चला जाएगा। और वैसे कहते हैं ना कि जब कोई खुश रहता है तो खुशी में कब ये वक्त निकल जाए पता ही नहीं चलता है। शायद इसी वजह से कहते हैं कि समय तो धीरे धीरे चल, क्योंकि हैप्पीनेस में ये वक्त बहुत बहुत बहुत ही तेज़ रफ्तार से निकल जाता है, पता नहीं चलता है। एंड ट्रस्ट मी, ये सैटरडे संडे कब आकर निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, पलक झपकते ही ये वीकेंड भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इसके बारे में सोचकर स्ट्रेस ना लें, हम तो चाहते हैं कि आप अपने इस फ्राइडे इवनिंग को एकदम से बहुत ही एंजॉय करें हमारे साथ, हमारी पूरी RM2 टीम के साथ। और चलिए, नॉन स्टॉप ऐसे ही गाने चलाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और ऐसे ही नॉन स्टॉप आपके मैसेजेस हम तक पहुँचने चाहिए ऑन 5499-1294।
0: Filmy Jam
1: RM2 Radio Musti।

0: फिल्मी जैम
1: ओएमजी रेडियो मस्ती।
2: Already 7:47 and चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके messages की ओर and हमारी प्यारी सी राधा जी आ चुकी हैं on the waves of Radio Masti all the way from Canada उड़ते उड़ते आ गई हैं and पंखों को उड़ान देने के लिए एकदम तैयार हैं और चलिए I just so hope राधा जी that you're doing good and साथ में आपने हमें message भेजा नमस्ते दिव्या जी hope you're doing good hope you're feeling better now बिल्कुल थोड़ी राहत तो मिली है लेकिन फिर भी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है बट कोई बात नहीं आप लोगों से मुलाकात करने के बाद किसको इतना ख्याल रहता है कि आवाज़ ठीक नहीं है या फिर खांसी हो रही है या फिर नाक बंद है हम तो बस नॉन स्टॉप आप लोगों के साथ बातें करते ही रहते हैं और इसी में हम खुश भी हो लेते हैं राधा जी थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए थैंक यू फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शन हैप्पी फ्राइडे टू ऑल प्लीज़ नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर ऑल योर फैमिली इन कैनेडा मॉरिशस एंड आरंट टू लिसनर्स सभी को आपने एडवांस में विश किया है हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड गणपति बप्पा मोरिया थैंक यू सो मच एंड आपको भी बेस्ट विशेज एंड ऑल दोज जिन्होंने अपना व्रत ऑलरेडी शुरू कर दिया है चलिए इट्स अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग एंड कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ आपके मन को रिझाना है और आपके दिल को चुराना है ऑफ कोर्स तो चलिए इफ़ यू ड्राइविंग राइट नाउ गोइंग बैक होम मे बी आपका काम थोड़ा देर से ख़त्म हुआ है और मे बी आप घर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अभी हमारी लेडीज़ लोग शायद आप लोग किचन में हैं या तो खाना बन चुका है या फिर खाना खाने के बाद आप अभी बर्तन मान रहे हैं और किचन साफ कर रही हैं तो कोई बात नहीं आपको बोकुहाज और ऐसे ही साथ देते रहिएगा
0: Filmy Jam
1: RM2 Radio Musti

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
0: एंटेना कभी करता नहीं कैच एंटेना, लेकिन आप हमारे हर एक इस गाने को कैच कीजिएगा और इसमें दिल में संजो कर रखिएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू द फ्राइडे वाइब्स। और हम तो चाहते हैं ही इस फ्राइडे इवनिंग को आप मज़ेदार और धमाकेदार बनाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़ी ना फ्राइडे आता है, कितना इंतज़ार करना पड़ता है तभी जाकर ये फ्राइडे आता है, तो आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। एंड चलिए दिव्या का साथ है इन योर फिल्मी जैम, और ट्रस्ट मी यहाँ पर there's no jam between the songs, क्योंकि आराम से इत्मीनान से आपको गाने सुनाते रहेंगे। एंड बिल्कुल फ्राइडे इवनिंग को बहुत सारी गाड़ियाँ निकल पड़ती हैं रास्ते पर, और अगर आप भी यू और ड्राइविंग मे बी आपको हम कहेंगे हैव अ सेफ एंड अ म्यूजिकल राइड विद रेडियो मस्ती, एंड हमारा साथ देते रहिए आप लोग। एंड चलिए आपके मैसेजेस एक बार फिर से ऑन 5499 1294, कीप ग्रूविंग एंड कीप मूविंग विद RM2।

0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: वेल दैट्स अ सुरैया फॉर यू श्रेया घोषाल विशाल ददलानी की आवाजों में। कीप एंजॉयिंग एंड कीप रॉकिंग द सॉन्ग्स। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज आप लोग करना

चाहते हैं तो बिल्कुल गाने आपको मोटिवेशन दे ही रहे हैं थोड़ा बहुत डांस करने के लिए, सो व्हाई नॉट अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत डांस, नॉट अ बैड आइडिया टू सिंग एंड स्वे अलोंग।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: to Radio Musti. गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी. RM2
1: रेडियो मस्ती.
2: Listen. Get up. That's right.

0: से। फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: वेल शाम के बाद ऑफ कोर्स वी हैव विशाल ददलानी वंस अगेन, सचिन जिगर साथ दे रहे हैं एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा गाना गोज आउट टू ईच एंड एवरीवन कनेक्टेड विद अस। कुड़ी नू नचने दे ऑफ कोर्स टू ऑल आवर ब्यूटीफुल लेडीज एंड ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। अगर आप लोग डांस करना चाहते हैं तो हिचकिचा क्यों रहे हैं।

0: अंग्रेजी बीट का तो पता नहीं भाई, लेकिन हमारे देसी बीट पर सब लोग जरूर एंजॉय कर रहे हैं और आपके मैसेजेस तो हम तक जरूर पहुंच रहे हैं, टेलिंग अस दैट यू हैविंग द बेस्ट ऑफ मोमेंट्स. चलिए ऐसे ही आप लोग एंजॉय करते रहिए हमारे साथ, एंड 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, और जितना भी हो सके हम कुछ और खूबसूरत धमाकेदार गाने समेटने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको भी मौका मिले टू स्माइल एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम स्पेंडिंग दिस फ्राइडे इवनिंग विद रेडियो मस्ती.
1: Filmy Jam.
2: RM2 Radio Musti.

आई एम मनी बेन, शकुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: Well, once again, we have Vishal Dadlani and Neeti Mohan for you. 8:55 होने को हैं और चलिए इसी गाने के साथ it's a time for Divya to say goodbye to all of you. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है for your Saturday evening कल. तब तक के लिए take care, keep smiling and bye-bye.

Wishing you all a lovely evening, my dear listeners. नीतू के साथ जुड़े हुए हैं on Radio Musti. स्वागत है आपका. Of course, 3 घंटों का सफर. It's your late night grooves. चले साथ निभाते हुए म्यूजिकल सफर में आप ही हमारे हम सफर बने हुए हैं इस सर्दी के मौसम में. साथ निभाते रहिएगा till midnight.

कहते हैं ना कि जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जी हाँ, जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं जीना सीखना चाहिए। हर दिन अपने साथ एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नया मौका लेकर आता है। हम अक्सर कल की फिक्र और आने वाले वक्त की प्लानिंग में आज का खूबसूरत पल खो देते हैं। That's why आज को महसूस करें ना। अपने फेवरेट गाने सुनिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। अपनों के साथ बात कीजिए, दिल खोल कर हंसिए और जो छोटी छोटी खुशियां हैं सामने उन्हें गले लगाइए, क्योंकि जिंदगी का असली मजा बड़े मौकों में नहीं बल्कि उन छोटे लम्हों में छुपा होता है जो दिल को सुकून दे जाए।

हर पल परफेक्ट होना नहीं, लेकिन हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। कभी बिना किसी वजह से मुस्कुरा देना, कभी किसी अपने को फोन करके सिर्फ इतना कहना, कैसी हो? ये छोटी छोटी बातें ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। इसलिए वक्त को सिर्फ कैलेंडर और क्लॉक में मत नापिए, उसे अपनी यादों में महसूस कीजिए। जो पल मिल रहा है उसे दिल से जिए।

सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है ना, लेकिन हर वक्त प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना भी तो जिंदगी नहीं है। कुछ वक्त के लिए अपनी फिक्रों को साइड में रखिए और खुद से कहिए, आज मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन आज का पल हमारे हाथ में है। तो हंसिए, प्यार कीजिए, अपने फेवरेट म्यूजिक का मजा लीजिए और आज को पूरी तरह से जिए।

खुशी के लिए हमेशा किसी बड़े रीजन की जरूरत नहीं होती है। कभी सुबह की ठंडी हवा खुशी दे जाती है, तो कभी किसी अपने की मुस्कुराहट, कभी रेडियो पर बजता हुआ फेवरेट सॉन्ग, या कभी एक कप चाय या फिर कॉफी। खुशी हमारे आसपास बिखरी होती है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। That's why, छोटी खुशियों को छोटा मत समझिए, उन्हें महसूस करें, संभालिए और अपने दिल में जगह दीजिए। यही छोटे पल कल की सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं।

थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स। वैसे दोस्तों, दूसरों की खुशी का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद के लिए भी जीना कितना ज़रूरी है ना? अपनी पसंद का खाना, कहीं घूमने जाना, म्यूजिक सुनना, अपने हॉबीज के लिए वक्त निकालना, हर वक्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस के बोझ में मत रहे। आप भी डिजर्व करते हैं थोड़ा सुकून, थोड़ी मस्ती और बहुत सारी खुशियाँ। जिंदगी सिर्फ देखिए ड्यूटीज पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को खुश रखने का भी नाम है।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti
2: बहुत दूर मुझे चले जाना

वैसे हम तो आपको खुश कर रहे हैं इन गानों के जरिए, थैंक यू सो मच। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। बचपन बीत गया, कुछ लोग दूर हो गए, कुछ रिश्ते बदल गए, कुछ यादें दिल में रह गई। इसलिए जो लोग आपके पास है आज, उनके साथ वक्त बिताएं, उनसे बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, यादें बनाइए। कल के लिए खुशी पोस्टपोन मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी कभी एक दिन का इंतजार करते रह जाते हैं और वो दिन कभी आता ही नहीं। आज ही वो दिन है, तो खुलकर जिए।

किया जा सकता है। अपने घर में म्यूजिक बजाइए, फैमिली के साथ हंसिए, फ्रेंड्स से मिलिए, अपने दिल की बात कीजिए। कैसा महसूस हो रहा है? जरूरी नहीं कि सेलिब्रेशन के लिए कोई बड़ा ओकेजन हो। कभी बिना वजह भी खुश होना जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और हर सुबह हम एक नई चांस देती है खुद को खुश रखने का, दूसरों को खुश रखने का और नए सपने देखने का।

अगर आप परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस का वेट करेंगे तो शायद जिंदगी के बहुत सारे खूबसूरत पल ऐसे ही निकल जाएंगे। प्रॉब्लम्स के बीच भी स्माइल करना सीखे, थकान के बीच थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, बिजी स्केड्यूल में अपने लिए कुछ मिनट निकाल लीजिए। परफेक्ट नहीं है लाइफ, मीनिंगफुल मोमेंट्स जरूरी है, जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और जो नहीं है उसके लिए उम्मीद रखिए। जिंदगी को कंप्लेन करते हुए नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ जीना सीखिए।

अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे गानों के बीच थैंक यू सो मच। कभी कभी हम दुनिया की आवाज इतनी ज्यादा सुनते हैं कि अपने दिल की आवाज ही भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, किसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सब सोचते सोचते हम खुद को पीछे छोड़ जाते हैं। दोस्त, अपने दिल को भी थोड़ा वक्त दीजिए ना। जो चीज आपको जेन्युइनली खुशी देती है उसको जिए। म्यूजिक पसंद करते हो तो म्यूजिक सुनिए, ट्रैवल पसंद करते हैं तो सफर कीजिए, किसी से प्यार है तो कह दीजिए। जिंदगी छोटी है, दिल की बात दिल में रखने के लिए नहीं।

जिंदगी के आखिर में हमारे पास सबसे कीमती चीज एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स नहीं बल्कि यादें ही होती है। किसी ट्रिप की याद, फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त, दोस्तों के साथ की गई मस्ती, किसी फेवरेट सॉन्ग से जुड़ी हुई कहानी, ये सब दिल के खजाने होते हैं। इसलिए सिर्फ चीजें कलेक्ट मत कीजिए, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कीजिए। लोगों के साथ वक्त बिताइए, नई प्लेसेस देखिए, न्यू सॉन्ग सुनिए, हंसिए, घूमिए, सीखिए और जिंदगी की खूबसूरत यादें बनाइए।

अगर कल मुश्किल था तो कोई बात नहीं, हर सुबह एक फ्रेश बिगिनिंग होती है। अपने दिल से पुरानी निगेटिविटी को थोड़ा कम कीजिए और नए दिन को एक स्माइल के साथ वेलकम कीजिए। हो सकता है कि आज कुछ अच्छा आपका इंतजार कर रहा हो, हो सकता है कि आज कोई अच्छी खबर मिले, कोई खूबसूरत मुलाकात हो, कोई फेवरेट सॉन्ग आपका मूड बदल दे। दैट्स व्हाई उम्मीद मत छोड़िए, जिंदगी हर पल कहती है चलो एक बार फिर से शुरू करती है।

टाइम से बाय बाय चलते चलते बस इतना ही कहेंगे। जिंदगी एक तोहफा है दोस्त, इसे सिर्फ टेंशन कंप्लेंट्स और वरीज में मत गुजारिए। हाँ मुश्किलें आएंगी, दिल कभी दुखेगा, प्लान्स कभी फेल होंगे और कुछ दिन अच्छे होंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी सफर जारी रखिए, अपने फेवरेट लोगों के साथ वक्त बिताइए, म्यूजिक को अपना साथी बनाइए, छोटी खुशियों पर मुस्कुराइए और हर नए दिन को एक नए मौके की तरह देखिए। फुल्ली जियो, दिल खोल कर जियो, प्यार बांटिए, खुशियां समेटिए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, लेकिन हम जरूर मिलेंगे वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। लेकिन कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।